उस सेवक नू कोई भी दुख पौंदा नहीं जिस सेवक दे सिर ते सतगुरु दा हाथ हुंदा है। सतगुरु जी बाणी च फरमान करदे ने, सब सहे उपर नजर प्रभ तेरी, किसे थोरी किसे है कनीरी। निगाह सतगुरु दी सब दे उपर है, कृपा बरस रही है, पर किसी ते थोड़ी है, पर किसी ते बहुत है। जिदे ते बहुत है, जिदे ते सतगुरु की प्रसन्नता है, सतगुरु जी तुट के उसनू सतसंगत की दात देंदे ने, नाम की दात देंदे ने, अपना बना लेंदे ने। उस सेवक दे सतगुरु जी सारे कार्य रास करदे ने। यही नहीं, ये लोग सुखिए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मिले। उस अपने सेवक दे ये लोक ते परलोक दोनों ही सहेले कर देंदे ने, किदे जिदे ते सतगुर दी नजर कनेरी है। जो सेवक सतगुरु नूं समर्पित हो जाता है, जो सतगुरु के वचना ते सेवक चलता है, गुरु उस दे उपर कृपा करता है। गुरु प्यारियो, मैं एक गल जरूर कह दिया, हर एक इंसान की कोई ना कोई भटकना है। कोई किते भटक रहा है, कोई किते भटक रहा है, कोई किसी नूं रब मानी बैठा है, कोई किसी नूं रब मानी बैठा है। जिन्ना चिर इंसान ये ओट आसरे बाहरले तकदा है, उन्ना चिर ये इंसान ये जीव धक्के खांदा है। किदां धक्के खांदा है? फिर एक जोन विच नहीं जांदा, अनंत जोना भोगदा है। पातशाह जी बाणी विच सानू फरमान करदे ने कि देखो, ये मानस जन्म दुलंब है, होए ना बार है बार। ये मानस जन्म दिता है, समझ दिती है, ज्ञान इंद्रियां दितियां ने, नेत्र दिते ने, कान दिते ने। पर गुरु प्यारियो, मैं आप जी ने एक गल होर भी नाल दस दिया, तुसी कदी विचार करना, कले बैठ के देवते ने हाले मुक्त नहीं होए। उन्हां दे कोल एक विकसित मन है, बहुत विकसित मन है, सातों भी कितने ज्यादा दीवा बलिया होया है। पर लेकिन मुक्त होण वास्ते इस देही को सिमरै देव, सो देही भज हर की सेव। वो देवते भी इस देही नूं सिमरदे ने, उसनूं कहिंदे ने, हे अकाल पुरख साडे ते कृपा कर, सानू भी मानस जन्म बख्श, ता कि असीं रहिंदा पेंडा जिहड़ा है वह भगती करके तेरी असीं तय कर सकीए, तेरे विच लीन हो सकीए। हुण देवतियां कोल विकसित मन है, पर मुक्त होण वास्ते तन नहीं है। उन्हां नूं भी एक बार फिर माता दे गर्भ तों जन्म लैणा पैंदा है। एक पशु है, उस पशु दे कोल विकसित तन है, बड़ा विशाल तन है हाथी दे कोल, बड़ा ताकतवर शरीर है शेर दे कोल, पर विकसित मन नहीं है उसके कोल। ये मन तन सतगुरु जी ने एक सिर्फ इंसान नूं बख्शा है। जिथे इसनूं मन की दात दिती है, तन की दात दिती है, इत्थे इसनूं सारी समझ भी दिती है। ता ही सतगुरु जी कहिंदे ने कि ऐ जीव, नहीं तो तू इस पौड़ी ते जो नर छुटकै से आए जाए दुख पाएगा। जदों ये पौड़ी तेरे हथों छुट गई ना, तो फिर तेरा आउण जाण दा गेट बन जाएगा। फिर की होवेगा? केते रुख बिरख हम चीने, केते पशु उपाए, केते नाग कुली मह आए, केते पंख उड़ाए। कई जूना तू दरख्तां दियां, जानवरां दियां, उड़न वाले पंछियां दियां, पशुआं दियां, सप्पां दियां भोग के आया है। कई जूना तू पत्थरां दियां भी भोग के आया है। केते रुख बिरख हम चीने, केते पशु उपाए, केते नाग कुली मह आए, केते पंख उड़ाए। इस करके इनिया जोना भोगण तो बाद 84 लाख जोना भोगण तो बाद तेन ए पई प्राप्त, मानुख दिहोरिया गोविंद मिलन की एहो तेरे परिया। जिहड़ी तू आवागौन की भटकना है शरीर विच रह के कर रहा ने, कदी किसी दे दर ते, कदी किसी दे दर ते, तू उस परमेश्वर का हो जाए। जे तू मेरा हो रहे सब जग तेरा हो, जदों तू परमेश्वर का बन जाएगा सारा संसार तेरा बन जाएगा।
ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਣ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਸ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਗੇੜ ਨਾ ਬਣੇ, ਫਿਰ 84 ਲੱਖ ਜੋਨਾਂ ਨਾ ਭੋਗਣੀਆਂ ਪੈਣ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅਬ ਕੀ ਵਾਰ ਬਖਸ਼ ਬੰਦੇ ਕੋ ਬਹੁ ਨ ਪਾਵਜਲ ਫੇਰਾ। ਸੋ ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਤਰੁੱਟੀਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸਤਿਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਥਾਵਾਚਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਥਾ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਥਾ ਸਰਵਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,

गावन तुदनों पवन पानी बैसंतर गावै राजा धर्म द्वारे गावन तुदनों चित गुप्त लिख जानन लिख लिख धर्म बीच।

गावन तुदनो इंद्र इंद्रासन बैठे देवते आदर नाले गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनो साध विचारे गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे गावन तुदनो पंडित पढ़न रखीसर जुग जुग वेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुर्ग मछ पयाले गावन तुदनो रतन उपाए तेरे अठसठ तीर्थ नाले गावन तुदनो जोत महाबल सूरा गावन तुदनो खाणी चारे गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर

न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर देखै कीता आपना जो तिस दी वडियाई जो तिस भावै सोई करसी फिर हुक्म न करना जाई सो पात साहु साहपत साहिब नानक रहन रजाई आसा महला पहला सुन वड्डा आखै सब कोए केवड़ वड्डा डीठा होए कीमत पाए न कहया जाए कहने वाले तेरे रहे समाए वड्डे मेरे साहिबा

सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई, ज्ञानी ध्यानी गुर गुरहाई, कहन न जाई तेरी तिल वड्याई, सब सत सब तप सब चंगियाइयां, सिद्धां पुरखां कियां वड्याइयां, तुद बिन सिद्धि किने न पाइया, कर्म मिले नाही ठाक रहाइया, आखण वाला क्या विचारा, सिफती भरे तेरे भंडारा, जिस तू देह तिसै क्या चारा, नानक सा

जिन दिन कर कै कीती रात खसम विसारह ते कम जात नानक नावै बाज सनात राग गुजरी महला चौथा हर के जन सतगुर सतपुरखा बिनो करो गुर पास हम कीरे किरम सतगुर सरणाई।

मेरा प्राण सखाई, हर कीरत हमरी रहरास रहाओ। हर जन केवट भाग वडेरे, जिन हर हर सरदा हर प्यास। हर हर नाम मिले त्रिपता सह, मिल संगत गुण परगास। जिन हर हर हर रस नाम न पाया, ते भागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। तन तन सत संगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम परगास। राग गुजरी महला पंजवा, काहे रे मन चित वह उत्तम। जा आहर हर जीव परया, शैल पत्थर मह जंतु पाए। ताका रिजक आगे कर धरिया, मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया। गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरिया रहाउ। जनन पिता लोक सुत बनता, कोई न किस की तरिया। सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर, काहे मन भओ करिया। ऊडे ऊडावे सह कोसा, तिस पाछे बचरे छरिया। तिन कवन खलावे कवन चुगावे, मन में सिमरन करिया। सब निदान दस अष्ट सिदान, ठाकुर कर तल तरिया। जन नानक बल बल सद

सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन, हर अगम अगम अपारा, सब त्यावह सब त्यावह तुद जी, हर सच्चे सिरजनहारा। सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दातारा, हर त्यावो संतो जी, सब दुख विसारण हारा।

वह तुद जी जन नानक तिन कुर्बाना हर त्याव है हर त्याव है तुद जी से जन जुग मह सुखवासी से मुकत पहे जिन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फासी जिन निरभाओ जिन हर निरभाओ।

तू करता सचियार मैडा साई, जो तो भावै सोई थीसी, जो तू देहे सोई हो पाई रहाओ। सब तेरी तू सबनी ध्याया, जिसनो कृपा करहे तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लाधा मनमुख गवाया, तुद आप विछोड़या आप मिलाया।

खेल, विजोग मिल विछुड़या संजोगी मेल। जिस नौ तू जाना हे सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख वखाने। जिन हर सेविया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर न कोए। तू कर कर वेख है जान है सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला।

डूबियले मन एक न चेतस मूढ़ मना हर विसरत तेरे गुण गलया रहा ना हो जति सती नहीं पढ़या मूर्ख मुगदा जन्म भया प्रणवत नानक तिन की सरणा जिन तू नाही विसरया आसा महला पंजवा पई प्राप्त मानुख देहुरिया गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया अवर काज तेरे किते न काम मिल साध संगत भज केवल नाम सरंजाम लाग भवजल तरन कै जन्म वृथा जात रंग माया कै रहा जप तप संयम धर्म न कमाया सेवा साध न जानिया हर राया कहो नानक हम नीच करम्मा शरण परे की राखो शर्मा।

एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कबियो बात बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दै रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तव चरणन मन रह हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सबै तुम काबहु आप हाथ दै मुहे बचावहु सुखी बसै मोरो परवारा सेवक सिख सबै करतारा मोरक्षा निज कर दै करिए सब बैरन को आज संगरिए पूरन होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें चाट कोई अवर न त्याऊं जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ दे मुझे उबरी है मरण काल का त्रास निवरी है पूजो सदा हमारे पच्छा श्री अस तुझु करे हो रक्षा राख ले हो मुहे राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दशकंता काल पाए ब्रह्मा बाप तरा काल पाए शिव जू अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जूथियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जच्छन उपजायो आदंतिक कै अवतारा सोई गुरु समझे हो हमारा नमस्कार किस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सुवारी शिवकन को सब गुण सुख दियो शत्रन को पल मुँह बद कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर अस थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने काट काट के पट पट की जाने जब उदकर्ख करा कर तारा प्रजा तरत तब देह अपारा जब आकर्ख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे आप अपनी बूझ उचारे तुम सब ही ते रहत निरालम जानत वेद भेद अर आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ ताका मूड उचारत भेदा जाको भेव न पावत वेदा ताका करपाहन अनुमानत महामूड कछ भेद न जानत।

है जीती, बरनत भिन्न भिन्न तुह तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कही भूपा, अंडज जेरज सेतज कीनी, उत्पुज खान बहुर रच दीनी, कहूं फूल राजा हवै बैठा, कहूं सिमट भयो शंकर इकैठा, सिगरी सृष्टि दिखाए अचंपव, आद जुगाद स्वरूप स्वयं पाव, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता, जे आस तुज तव सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखत हवै मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे, जो कल को एक बार ते है, ताके काल निकट नह है, रक्षा हुए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाहि निहरे हो, ताके ताप तनक मह हरे हो, रिद सिद्ध कर्मों सब हुई, दुष्ट छाह छव सकै न कोई।

कृपा तुमरी कर। मैं न कहो सब तो हे बखाने दोहरा सगल द्वार को छाड़ कै कहो तुहारो द्वार बाहीं गहे की लाज अस गोबिंद दा।

सत्संग जी, बोलो जी। वाहेगुरु वाहेगुरु। एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वाहती पाशी दस नहीं प्रथम भगवती समर कहे गुरु नानक लई त्याय भयंकर कुरते अमरदास रामदास सहाय अर्जन हर कुबिंद सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई से सब दुख जाए तेग बहादुर सिमर कर्ण उन दयावता है सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई हुए सहाय दसा पातशाह के पुत्रात्मक रूप साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब के पाठ दरदा त्यंतर के घर से बोलो जी वाहे आप जी दे पांच प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्ते हठिया जपिया तपिया जिन्हें नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाहि देख कंडेट किया तेना प्यार से प्यारा ने कमाई दा ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरु। जिन्हां सिंघां सिंघणियां धर्म हे सही दिते बंद बंद कटवाए खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां दे चढ़े आरे न चढ़ाए गए गुरुद्वारे सेवा ते गुरबानियां कीतियां धर्म नहीं आ रहा सी किसी तरीके सत्संग दिभाया तेना भी कमाई दा ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरु। बोलो जी वाहेगुरु। प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु नाम किताब है जित आवन का सद का सब सुखो है जहां जहां गुरु खालसा साहब से रखा आज देख देख की फतेह बृद की पहज पंथ की जी श्री साहब जी से आए खालसा जी के बोल बाले बोलो जी वाहेगुरु। सिखा नु सिखी दान केस दान रैत दान विवेक दान शाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहब के दर्शन स्नान क्योंकि चंडे बूंगे जुग जुग अटल धर्म कह जयकार बोलो जी वाहिगुरु। सिखा का मन नीवा मत उची मत पद के राखे आप वाहिगुरु। गुरु की बनवाज पंथ सदा से आज त्याज्य गुरुद्वारा ननकाणा साहब पंजा साहब होर गुरुद्वारे गुरु धाम जिन्हें तो आप पंथ भी छोड़िया गया है उन्होंने खुले दर्शन दीदार तो सेवा संभाल दादा अपने खालसा जी ने बख्शो ये ओटिया दी ओट गुरु ने आसरिया दे आसरे गुरु धन धन गुरु ग्रंथ तार पिता जी दोए कर जोड़ करो अरदास भावे तो आने रास ये गरीब रवाज जी आप जी के चरण कामना अरदास जी आपने बख्शिश की है आपके चरण पित्र प्रमाणी सुखुण साल संपूर्ण पाठ दिता है ऐस वे संध्या समा जान के आपके चरण सोधदार वह रास शब्द पाठ की कृपा करो भूया भुला चुका माफी बख्शो पढ़ी हुई बाणी सोध की सत चरण प्रमाण करो बाणी का भाव सारिया संगत धीरतान वादा करो जी अगो तो शोध के पित्र बाणी चाहिए पर बुद्धि बख्शिश करो भी महाराज इस खुशी आप जी दख्शिया दातों में पित्र कड़ाह शहर के गति आकर हाजिर दता आप जी भोग लाओ शीत प्रसाद सात संगत की रचना लायक हो जो जी सके स्वास स्वास आप जी का पित्र नाम जप बख्शिश करो दता दुखा कलेशा रोगों का नाश करो सुखों का प्रकाश करो देश प्रदेश रखा बख्शिश करो जी गरीब नवाज कृपा कर दतार बख्शिश करो आप दख्शिया दातों के नगर छोट सवारी प्रवान करनी दतार आपके चरण सेवा कर रहे सारे प्यारी सिंगा सिंगणियां तंदुरुस्ती बख्शो चाटी कला बख्शो अरे सदा ही इसे तरह अपने चरण सेवा की भावना बख्शो की पालता करो जी गरीब नवाज कृपा करो तार पिता जी आपके चरण कामना दरदास में तार पिता जी हो गरीब नवाज सेव कौम के महान शहीद भाई जसवंत सिंह जी खालड़ा अति बेअंत शहीद सिंह से पातशाह जी जिन्हें दिन लाशों निवास दस के गरीब नवाज संस्कार किया गया जतार पिता जी उन्होंने शहीदों की गरीब नवाज याद में गुरुद्वारा साहब हो जाए संगतों जतार पिता जी अरदास बेनती है उन्होंने सारे शहीदों दिन आत्मा चरणा निवास बख्शो ठंड बख्शो पिछले परिवार को भारत भारत दाज बख्शो कौम उन्होंने पिछोड़े चलने की भावना दाज बख्शो भावना बख्शो कृपा दतार मेहर कर दें शेख कौम खालसा पंथ एकता स्वागत प्यार जी बख्शिश करो अभी इन्होंने त्यार शहीदों के दरसाए मार्ग में बनाने वास्ते मदद दाज बख्शो भावना दाज बख्शो सदा उन्होंने इन दिहाड़ों में मनाते रहने वास्ते हिम्मत का दाज बख्शिश करो गुरु नवाज जी बख्श करो गरीब नवाज तार जी गरीब नवाज जो सिख पंथ ऐस वे तार पिता जी गरीब नवाज जूझ रहे हैं उन्हों की चाटी कला बख्शो पातशाह जी दोषियों सजावा देने की कृपालता करो दाल बख्शिश करो जी संत ग्रंथ साहब का दार पिता जी हो अवतार कर सेवादार गरीब नवाज स्वर्गवासी बीबी गुरुदेव कौर कलसी आत्म शांति वास्ते परिवार को अरदासा बेनती प्रवान करो बख्शा दार बीबी गुरुदेव कौर कलसी को इस महादुरु की यात्रा करते हुए भुला चुके मा बख्शो उन्होंने गुण कन्या चार उन्होंने चरना भी बख्शो ठंड बख्शो उन्होंने आत्मा नवा कर बचा के पिछले परिवार को बच्चे रिश्तेदारों भाणा मन वाल दाग बख्शो परिवार सुख रखो तीर्थ बख्शिश कर दता पिछड़ी हुई आत्मा शांति बख्शो जी गुरु की कृपा करो
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਰ ਤੇ ਆਈਆਂ ਸਾਹ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਹ ਜੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਘੜੀਆਂ ਲਿਖੇ ਲਾਓ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਦਰ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਦੂਰ ਦਾਜ ਕਰਨ ਬੈਠੀਆਂ ਲਾਈਫ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚਰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਘੜੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਓ ਆਰਾਮ ਬਖਸ਼ੀ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਦੇ ਜਨ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਮਾਏ ਬੇਟਾ ਘਰ ਹੀ ਚਰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਸੇਵਕ ਮਾਈਆਂ ਸਫਲ ਕਰੋ ਕਾਰਜਵਾਦ ਬਦਤਾ, ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਸਭਾ ਦਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ ਜੀ, ਬਖਸ਼ੀ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਦੇ ਘਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗ ਸੰਗ ਸਿਆਦਾ ਬਖਸ਼ੋ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ, ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਭੁੱਲੋ ਤੱਕ ਮਾਈ ਬਖਸ਼ੋ ਪਿੱਤਰ ਨਾਮੀ ਬਖਸ਼ੇ ਬ੍ਰੰਥ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਕਥਾ ਕਿ ਬਾਈ ਰਮਤਾ ਵਾਸਤੇ ਆਗਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਲ ਸਵਾਰ ਕੇ ਚੰਨਾ ਦੁਰਾ ਦੀ ਬਣਾਓ, ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਜਤਾਵਾ ਨਾਨਕ ਨਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਹਰਾ ਗਿਆ ਭਾਈ ਅਕਾਲ ਕੇ ਤਵੀ ਚਲਾਏ ਉਪਮ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ ਕੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮਹਿਲ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਾ ਮਿਲੇਂਗੇ ਬਜੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਉਤਰੇ ਪਾ, ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਮ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾ, ਖੰਡਾ ਜਾ ਕੇ

0: मार्ग दा अर्थ है रस्ता, जे मार्ग के गणे जाहे ना कोसा, हर का नाम ऊहा संग तोसा। तोसे तो भाव खुराक है। पातशाह जी कहिंदे मार्ग बिखड़ा है जिदे विच जाना है। पातशाह जी कहिंदे आपां किधरे गड़ी कोई चंगी मार्ग रस्ते ते ना पाईए तो बंदा औखा हुंदा। कहिंदे रस्ता चंगा नहीं है, इस करके महाराज कहिंदे जिहड़ा रस्ता है बड़ा बिखम है, डरावना है, जिन्हां रस्ते तू जाना है। तां साहिब जी कहिंदे क्यों तरिया है, किवें तरिया जावेगा, भाव उत्थे तारन वाला केवल एक गुरु दा ही नाम होवेगा। जय महा भयान दूत जम दल है तह केवल नाम संग तेरा चले, उथे नाम सहाई होवेगा।
1: नानक गुर राखे से उबरे।
0: सतनाम श्री
2: वाहेगुरु।
0: साहब जी कहिंदे जिन्हां नूं मेरा गुरु रख लवे, गुरु अगे ही ते तरला लैणा है ना, सीधा मला महाराज नूं दरिया सतलुज दे कदी इधर लै जांदा कदी इधर लै जांदा, कदी बेड़ा बने लाउंदा ही नहीं है। सतगुरु महाराज कल की तरफ मुस्कराए, कह लगे बेड़ा बन्ने ला दे महाराज, होर दीदार कर ला, होर दर्शन कर ला, अखियां रज दियां नहीं है, बेड़ा बन्ने लग गया उधरे। जदो सतगुरु महाराज खजाने चो माया देन लगे, सीधा मलाह कहिंदा महाराज ये की है? साहब कहिंदे तेरा मजदूरी है, गरीब नवाज बेनती है, जेडे इको ही कारोबार दे मालक होण ना वो पैसे नहीं लिया कर दे, मैं ऐस मलाह तो बेड़ा बन्ने लाया है महाराज, तुसी समर्थ हो, गरीब निवास सचे पातशाह, पर लोक घर जांदिया होया संसार समंदर तो मेरे जीवन दा बेड़ा बन्ने ला दियो। सतगुरु जी प्रसन्न हो गए, घुट के गल वकड़ी वे चला लिया, तेवे अरदास करनी जिन्हां नूं गुरु रख लवे। पातशाह जी कहिंदे उभरे ओही बचदे ने, वरना बचा नहीं हुंदा।
1: हर नाम उधारी,
0: नाम करके तर जांदे ने, वाहिगुरु नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। आओ 5 सेकेंट मिनट दा समा आखो जी।

तेत घर गावो सोहेला सिवरे सृजन हारो तुम गावो मेरे निरभउ का सोहेला हाँ वारी जित सोहेला सदा सुख होए रहाओ नित नित जीड़े संभालियन।

हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो आनंद न मोहे आही प्यासा कृपा जल दे नानक सारंग का होए जाते तेरे नाए वासा राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर बहु पर्याम साधु खंडर खंडा है पूर्व लिखित लिखे गुरु पाए।

दुख जन्म मरण भव खंडा हे। अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बसोभ खंड ब्रह्मंडा हे। हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राकोट वड्डा हे। जन नानक नाम आधार टेक है हर नामे ही सुख मंडा हे। राग गौड़ी पूर्वी महला।

कर कृपा जिसको नाम दिया नानक सो जन निर्मल थिया जाके मन गुर की प्रतीत तिस जन आवे हर प्रभ चीत भगत भगत सुनिए तेहो लोए जाके हृदय एको होए सच करनी सच ताकी रहत सच हृदय सतमुख कहत साची दृष्ट साचा आकार सच वर्तै साचा पासार पार ब्रह्म जिन सच कर जाता नानक सो जन सच समाता श्लोक रूप न रेख न रंग किश त्रेह गुण ते प्रभ भिन्न तिसे बुझाए नानका जिस हुवै सो प्रसन्न अष्टपति अबिनासी प्रभ मन मै राख मानुख की तू प्रीत त्याग तिस ते परै नाही किश कोए सर्व निरंतर एको सोए आपे बिना आपे दाना गहर गंभीर गहीर सो जाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोबिंद कृपा निदान दयाल बखसंद साध तेरे की चरणी पाओ नानक कै मन एहो अनराओ मनसा पूर्ण सरणा जोग जो कर पाया सोई होग हरन परन जाका नेत्र फोर किसका मंत्र न जानै होर आनंद रूप मंगल सद जाकै सर्व थोक सुनिए घर ताकै राज मै राज जोग मै जोगी तप मैं तपीसर ग्रस्त मैं भोगी त्याए त्याए भगत है सुख पाया नानक तिस पुरख का किने अंत न पाया जाकी लीला की मित नाहे सगल देव हारे अवगाहे पिता का जन्म के जन पूत सगल परोई अपने सूत सुमत ज्ञान त्यान जिन दे जन दास नाम त्या वैसे तेह गुण मैं जाको परमाए जन्म मरै फिर आवै जाए ऊंच नीच तिसके अस्थान जैसा जनावै तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना भेख करै एक रंग नाना बेद की नो बिसथार प्रभ अभिनाशी एक ओंकार नाना चालित करे खिन माहे पूर रहे उ पूर्ण सब ठाए नाना बेद कर बनत बनाई अपनी कीमत आपे पाई सब घट तिसके सब तिसके ठाओ जप जप जीवै नानक हर नाओ नाम के धारे सगले जंत नाम के धारे खंड ब्रह्मांड नाम के धारे सिमरत वेद पुराण नाम के धारे सुनन ज्ञान ध्यान नाम के धारे आगास पताल नाम के धारे सगल आकार नाम के धारे पुरियां सब भवन नाम कै संग उधरे सुन श्रवण कर कृपा जिसे अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सो जन गत पाए रूप सत जाका सत अस्थान पुरख सत केवल प्रधान करतूत सत सत जाकी बाणी सत पुरख सब माहे समाणी सत करम जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करणी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तिसै सब भली सत नाम प्रभ का सुखदाई विश्वास सत नानक गुरु ते पाई सत बचन साधु उपदेश सत ते जन जाकै हृदय प्रवेश सत निरत बूझै जे कोय नाम जपत ताकि गत होए आप सत किया सब सत आपे जन अपने मित गत जिसकी सृष्ट सो करण हार अवर न बूझ करत बिचार करते की मित न जन किया नानक ज्योति सुभावै सो वर्तिया बिसमन बिसम पय बिसमात जिन बूझया तिस आया स्वाद प्रभ कै रंग राज जन रहे गुरु कै बचन पदार्थ लहे ओए दाते दुख काटन हार जाकै संग तरै संसार जन का सेवक सोबट भागी जन कै संग एक लिव लागी गुण गोबिंद कीर्तन जन गावै गुर प्रसाद नानक फल पावै श्लोक आद सच जुगाद सच है पिह सच नानक होसी पिह सच अष्टपदी चरण सत सत प्रसनहार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत पेखनहार नाम सत सत त्यावनहार आप सत सत सबतारी आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रभ भक्ता सुरत सत सत जस सुनता बुजन हार को सत सब होए नानक सत सत प्रभ सोए सत स्वरूप हृदय जिन मान्या करण करावन तिन मूल पछान्या जाकै हृदय विश्वास प्रभ आया तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया भय ते निरपौ होए बसाना जिस ते उपजिया तिस माहे समाना बस्त माहे ले बस्त गडाई ताकौ भिन न कहना जाई बुझै बुझनहार बबेक नारायण मिले।

नानक एक। ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी, ठाकुर का सेवक सदा पुजारी, ठाकुर के सेवक है मन प्रतीत, ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत। ठाकुर को सेवक जानै संग, प्रभ का सेवक नाम कै रंग, सेवक को प्रभ पालनहारा, सेवक की राखै निरंकारा, सो सेवक जिस दया प्रभ तारै, नानक सो सेवक सा सा समारै। अपने जन का परदा ठाकै, अपने सेवक की सर पर राखै, अपने दास को दे वडाई, अपने सेवक को नाम जपाई, अपने सेवक की आफत रखे, ताकि गत मित कोई ना लख है, प्रभ के सेवक काओ को ना पहुंचे, प्रभ के सेवक ऊंच के ऊंचे, जो प्रभ अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दैदिस प्रगटाया। निकी कीरी मैं कल रख है, भस्म कर लश्कर कोट लख है, जिसका शासन काढ़त आप, ताकऊ राखत दे प्रहाथ। मानस जतन करत बहु भांत, तिसके करत बिरथे जात, मारे न राखे अवर न कोए, सर्ब जियां का राखा सोए, काहे सोच कराए रे प्राणी, जप नानक प्रभ अलख विडाणी। बारंबार बार प्रभ जपी है, पी अमृत एहो मान तान त्रपी है, नाम रतन जिन गुरमुख पाया, तिस किसी अवर नाही दृष्टाया। नाम तन नामो रूप रंग, नामो सुख हर नाम का संग, नाम रस जो जन त्रिपताने, मन तन नामे नाम समाने। उठत बैठत सुवत नाम, कहो नानक जन कै सद काम, बोलो जस जीबा दिन रात, प्रभ अपने जन की नी दात, करै भगत आत्म कै चाए, प्रभ अपने स्यों रह समाए। जो हुआ होवत सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पछाने, तिसकी महिमा कौन बखानो, तिसका गुण कहे एक न जानो। आठ पहर प्रभ बसै हजूरे, कहो नानक से जन पूरे। मन मेरे तिन की ओट ले, मन ताने अपना तिन जान दे, जिन जाने अपना प्रभु पछाता, सो जन सर्व थोक का दाता, तिसकी शरण सर्व सुख पावै। तिसकै दरस सब पाप मिटावै, अवर स्यानक सगली शाड, तिस जन की तू सेवा लाग, आवन जान होवी तेरा, नानक तिस जन के पूजो सद पैरा। सलोक सत पुरख जिन जानया, सत गुरु तिसका नाऊ, तिसकै संग सिख उद्धरै, नानक हर गुण गाओ। अष्टपदी सतगुर सिख की करै प्रतपाल, सेवक कौ गुर सदा दयाल, सिख की गुर दुरमत मल हिरै, गुर बचनी हर नाम उचरै। सतगुर सिख के बंधन काटै, गुर का सिख बेकार ते हटै, सतगुर सिख को नाम धन दे, गुर का सिख वड भागी हे। सतगुर सिख का हलत पलत सवारै, नानक सतगुर सिख कौ जी नाल समारै, गुर के ग्रह सेवक जो रहै। गुर की आज्ञा मन में सहै, आपस कौ कर कश न जनावै, हर हर नाम हृदय सद त्यावै, मन बेचै सतगुर के पास, तिस सेवक की कार्य रास, सेवा करत हुए नेह कामे, तिस कौ होत प्राप्त स्वामी, अपनी कृपा जिस आप करे, नानक सो सेवक गुर की मत ले। बीस बिसवे गुरु का मन मान है, सो सेवक परमेश्वर की गत जान है, सो सतगुरु जिस हृदय हर नाओ, अनक बार गुरु को बल जाओ। सर्ब निधान जी का दाता आठ पहर आर, सर्ब निधान जी का दाता आठ पहर पार, ब्रह्म रंग राता ब्रह्म मैं जन, जन मह पार ब्रह्म, एक आप नहीं कश पारम, सह सयान पलया न जाइये, नानक ऐसा गुरबड़ भागी पाइये। सफल दर्शन पेखत पुनीत, परसत चरण गत निर्मल रीत, पेटत संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दुर्गा गवे, सुनकर बचन करण आगाने। मन संतोख आत्म पति आने, पूरा गुर आख्याओ जाका मंत्र, अमृत दृष्ट पेखाए होए संत, गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस पावे तिस लय मिलाए। जे बा एक उस्तत अनेक, सत पुरख पूर्ण बबेक, काहू बोल ना पहुचत प्राणी, अगम अगोचर प्रभ निर्बानी, निराहार निर्वैर सुखदाई, ताकि कीमत किने न पाई। अनेक भगत बंधन नित करै, चरण कमल हृदय सिमरै, सद बलहारी सत गुर अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने।
ਇਹੋ ਹਰ ਰਸ ਪਾਵੈ ਜਨ ਕੋਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੋ ਹੋਏ, ਉਸ ਪੁਰਖ ਕਾ ਨਾਹੀ ਕਦੇ ਵਿਨਾਸ਼, ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੁਣ ਤਾਸ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲੇ, ਸੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੇਵਕ ਕਉ ਦੇ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾ ਲੇਪ, ਮਨ ਮੈਂ ਰਾਖੈ ਹਰ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਗਾਸੇ, ਨਾਨਕ ਭਰਮ ਮੋਹ ਦੁਖ ਤਹਿਤੇ ਨਾਸੇ, ਤਪਤ ਮਾਹੇ ਠਾਂਡ ਵਰਤਾਈ, ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਦੁਖ ਨਾਠੇ ਭਾਈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੇ ਮਿਟੇ ਅੰਦੇਸੇ, ਸਾਧੂ ਕੇ ਪੂਰਨ ਉਪਦੇਸੇ, ਭਉ ਚੂਕਾ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਬਸੇ, ਸਗਲ ਬਿਆਦ ਮਨ ਤੇ ਖੈ ਨਸੇ, ਜਿਸ ਕਾ ਸਾ ਤਿਨ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਪ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰੀ, ਹਿਤ ਪਾਈ ਚੂਕੇ ਭ੍ਰਮ ਗਵਨ, ਸੁਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਸ੍ਰਵਨ, ਨਿਰਗੁਣ ਆਪ ਸਰਗੁਣ ਪੀਓਹੀ, ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਿਨ ਸਗਲੀ ਮੋਹੀ, ਆਪਣੇ ਚਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਬਣਾਏ, ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪੇ ਪਾਏ, ਹਰ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਸੋਏ, ਓਤ ਪੋਤ ਰਵਿਆ ਰੂਪ ਰੰਗ, ਭੈ ਪ੍ਰਗਾਸ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ, ਰਚ ਰਚਨਾ ਆਪਣੀ ਕਲ ਧਾਰੀ, ਅਨਕ ਬਾਰ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੀ, ਸਲੋਕ ਸਾਥ ਨਾ ਚੱਲੈ ਬਿਨ ਭਜਨ, ਵਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਸ਼ਾਰ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਕੁਮਾਵਨਾ, ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਧਨ ਸਾਰ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ, ਏਕ ਸਿਮਰ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਅਵਰ ਉਪਾਪ ਸਭ ਮੀਤ ਵਿਸਾਰੋ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਿਧ ਮੈਂ ਉਰ ਤਾਰੋ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਮਰੱਥ, ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਗਹਾਉ ਨਾਮ ਹਰ ਵਥ, ਇਹੋ ਧਨ ਸੰਚੋ ਹੋਵੋ ਭਗਵੰਤ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤ, ਏਕ ਆਸ ਰਾਖੋ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਸਰਬ ਰੋਗ ਨਾਨਕ ਮਿਟ ਜਾਹੇ, ਜਿਸ ਧਨ ਕੋ ਚਾਰ ਕੁੰਠ ਉਠਤਾ ਵੈ, ਸੋ ਧਨ ਹਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਾਵੈ, ਜਿਸ ਸੁਖ ਕੋ ਨਿਤ ਬਾਛੈ ਮੀਤ, ਸੋ ਸੁਖ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪਰੀਤ, ਜਿਸ ਸੋਭਾ ਕੋ ਕਰੈ ਭਲੇ ਕਰਨੀ, ਸਾ ਸੋਭਾ ਭਜ ਹਰ ਕੀ ਸਰਣੀ, ਅਨਕੂ ਪਾਵੀ ਰੋਗ ਨ ਜਾਏ, ਰੋਗ ਮਿਟੈ ਹਰ ਅਵਖਤ ਲਾਏ, ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਮੈਂ ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ, ਜਪ ਨਾਨਕ ਦਰਗਹਿ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋ ਹਰ ਕੈ ਨਾਏ, ਦੈਤ ਸੁਧਾਵ ਦਿਆ ਬੈਠਾਏ, ਤਾਕੋ ਬਿਗ ਨਾ ਲਾਗੈ ਕੋਏ, ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਬਸੈ ਹਰ ਸੋਏ, ਕਲ ਤਾਤੀ ਠੰਡਾ ਹਰ ਨਾਉ, ਸਦ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਉ, ਭਉ ਬਿਨ ਸਹਿ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਆਸ, ਭਗਤ ਭਾਏ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਤਿਤ ਕਰ ਜਾਏ ਬਸੈ ਅਬਿਨਾਸੀ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਾਟੀ ਜਮ ਫਾਸੀ, ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਕਹੇ ਜਨ ਸਾਚਾ, ਜਨਮ ਮਰੈ ਸੋ ਕਾ ਚੋ ਕਾਚਾ, ਆਵਾ ਗਵਨ ਮਿਟੈ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵ, ਆਪ ਤਿਆਗ ਸਰਣ ਗੁਰਦੇਵ, ਇਉ ਰਤਨ ਜਨਮ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰ, ਹਰ ਹਰ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਾਨ ਆਧਾਰ, ਅਨਕੂ ਪਾਵਨਾ ਛੂਟਣ ਹਾਰੇ, ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤ ਬੇਦ ਵਿਚਾਰੇ, ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੋ ਮਨ ਲਾਏ, ਮਨ ਬੰਛਤ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਏ, ਸੰਗ ਨ ਚਾਲਸ ਤੇਰੈ ਧਨਾ, ਤੂੰ ਕਿਆ ਲਪਟਾਵੈ ਮੂਰਖ ਮਨਾ, ਸੋਤ ਮੀਤ ਕੁਟੰਬ ਅਰਬਨਤਾ, ਇਨ ਤੇ ਕਹੋ ਤੁਮ ਕਵਨ ਸੁਨਾਥਾ, ਰਾਜ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਬਿਸਥਾਰ, ਇਨ ਤੇ ਕਹੋ ਕਵਨ ਛੁਟਕਾਰ, ਅਸ ਹਸਤੀ ਰਥ ਅਸਵਾਰੀ, ਝੂਠਾ ਡੰਫ ਝੂਠ ਪਾਸਾਰੀ, ਜਿਨ ਦੀਏ ਤਿਸ ਬੁਝੇ ਨਾ ਬੇਗਾਨਾ, ਨਾ ਵਿਸਾਰ ਨਾਨਕ ਪਛਤਾਨਾ, ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਤੂੰ ਲੈ ਆਨੇ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬਉ ਡੂਬੇ ਸਿਆਨੇ, ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੋ ਮਨ ਮੀਤ, ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਤੁਮਾਰੋ ਚੀਤ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਾਖੂ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਬਿਖ ਜਾਹੇ, ਆਪ ਜਪਹਾਉ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵਹਾਉ, ਸੁਨਤ ਕਹਿਤ ਰਹਿਤ ਕਤ ਪਾਵਹਾਉ, ਸਾਰ ਭੂਤ ਸਤ ਹਰ ਕੂ ਨਾਉ, ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਉ, ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਤੇਰੀ ਉਤਰਸ ਮੈਲ, ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਹੋਮੈ ਬਿਖ ਫੈਲ, ਹੋਹੇ ਅਚਿੰਤ ਬਸੈ ਸੁਖ ਨਾਲ, ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਲ, ਸ਼ਾੜ ਸਿਆਣਪ ਸਗਲੀ ਮਨਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਵੈ ਸੱਚ ਧਨਾ, ਹਰ ਪੂੰਜੀ ਸੰਚ ਕਰੋ ਵਿਵਹਾਰ, ਇਹਾਂ ਸੁਖ ਦਰਗਹਿ ਜੈਕਾਰ, ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਦੇਖੋ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੇ ਮਸਤਕ ਲੇਖੋ, ਏਕੋ ਜਪ ਏਕੋ ਸਾਲਾਹੇ, ਏਕ ਸਿਮਰ ਏਕੋ ਮਨ ਆਹੇ, ਏਕ ਸੁਖੇ ਗੁਣ ਗਾਓ ਅਨੰਤ, ਮਨ ਤਨ ਜਾਪ ਏਕ ਭਗਵੰਤ, ਏਕੋ ਏਕੋ ਏਕ ਹਰ ਆਪ, ਪੂਰਨ ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਪ੍ਰਭ ਵਿਆਪ, ਅਨਕ ਬਿਸਥਾਰ ਏਕ ਤੇ ਭਏ, ਏਕ ਆਰਾਧ ਪਰਾਸ਼ਤ ਗਏ,
मान तन अंतर एक प्रभराता गुरु प्रसाद नानक एक जाता श्लोक फिरत फिरत प्रभ आया परया तो सरनाए नानक की प्रभ बेनती अपनी भगती लाए अष्टपदी जाचक जन जाचै प्रभ दान कर कृपा देवो हर नाम सात जना की मांगो तूर पार ब्रह्म मेरे सरदा पूर सदा सदा प्रभ की गुण गावो सास सास प्रभ तुम्हें त्यावो चरण कमल सिंह लागै प्रीत भगत करो प्रभ की नित नीत एक ओट एको आधार नानक मांगै नाम प्रभ सार प्रभ की दृष्ट महासुख होए हर रस पावे बिरला कोए जिन च्याखे आसे जन तृपता ने पूरन पुरख नहीं डोलाने सुपर परे प्रेम रस रंग उपजै चाउ साध कै संग परे सरण आन सब त्याग अंतर प्रकाश आन दिन लिव लाग बड़भागी जपया प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए सेवक की मनसा पूरी पही सतगुरु ते निर्मल मत लई जन को प्रभ होए दयालु सेवकी नो सदा निहाल बंधन काट मुक्त जन भया जन्म मरण दुख भ्रम गया ऐश पुनी सरदा सब पूरी रब रहया सतसंग हजूरी जिसका सा तिन लिया मिलाए नानक भगती नाम समाए सो क्यों बिसरै जे काल ना पहने सो क्यों बिसरै जे किया जाने सो क्यों बिसरै जिन सब किश दिया सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया सो क्यों बिसरै जे अगन में राखै गुरु प्रसाद को बिरला लाखै सो क्यों बिसरै जे बिख ते काटै जन्म जन्म का टूटा गांडै गुरपूरै तत एह बुझाया प्रभ अपना नानक जन त्याया साजन संत करो एहो काम आन त्याग जप हो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपहो अवरा नाम जपावहो भगत पाए तरिये संसार बिन भगती तन हो सीशार सर्ब कल्याण सुख निद नाम बूढ़त जात पाए विश्राम सगल दुख का होवत नास नानक नाम जपो गुण तास उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ मन तन अंतर एही सुआओ नेत्रों पेख दर्श सुख होए मन बिगसै साध चरण धोए भगत जना कै मन तन रंग बिरला कु पावै संग एक बस्त दीजै करमया गुरु प्रसाद नाम जप लया ताकि उपमा कही न जाए नानक रहया सर्व समाए प्रभ बख्शंद दीन दयाल भगत वशल सदा किरपाल अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व घटा करत प्रतपाल आद पुरख कारण करतार भगत जना के प्राण आधार जो जो जपै सो होए पुनीत भगत पाए लावे मन हीत हम निर्गुनी यार नीच अजान नानक तुमरी शरण पुरख भगवान सर्ब बैकुंठ मुक्त मोख पाए एक निमक हर के गुण गाए अनक राज भोग बडयाई हर के नाम की कथा मन पाई बहु भोजन का प्रसंगीत रसना जपती हर हर नीत भली सो करनी सोभा तनवंत हृदय बसे पूर्ण गुरमंत साध संग प्रभ देहु निवास सर्व सुख नानक प्रगास सलोक सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप अपन किया नानका आपे ही फिर जाप अष्टपदी जब अकार एक अशना दृष्टिता पाप पुन तब कहते होता जब तारी अपन सुन समात तब बैर विरोध किस संग कमात जब इसका वर्ण चिहन न जापत तब हरक सोग कहो किसे व्यापत जब अपन आप पार ब्रह्म तब मोह कहां किस होवत परम अपन केर आप वरती जा नानक करने हार न दूजा जब हो वत प्रभ केवल तनी तब बंद मुकत कहो किस कहो गनी जब एक है हर अगम अपार तब नरक सुर्ग कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सहज सुबाए तब सेव साकत कहो कि तठाए जब आप हे आप हो अपनी जोत तरह तब कवन निडर कवन कत डरै आपन चालित आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार
अबिनासी सुख आपन आसन तह जन्म मरण कहो कहा बिनासन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अवगित अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर आगादे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे आपन आप आप ही अचर जा नानक आपन रूप आप ही ऊपर जा जह निर्मल पुरख पुरख पत होता तह बिन मैल कहो क्या तोता जह निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन कौमान कौन अभिमान जह स्वरूप केवल जगदीश तह शाल शिद्र लगत कहो कीस जह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावै तह तिसै भूख कवन त्रिपतावै करन करावन करने हार नानक करते का नाहे सुमार जब अपनी शोभा आपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सोत पाई जय सर्वकला आपे प्रवीण तह वेद कतेव कहा कूचीन जब आपन आप उरतारै तौ सगन अपसगन कहा बिचारै जह अपन ऊच अपन आप नेरा तह कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गत जानो आप जह अशल अशेद अभेद समाया ऊहा किसे व्यापत माया आपस को आपे आदेश तेह गुण का नाही प्रवेश जह एक है एक एक भगवंता तह कौन अचिंत किस लागै चिंता जह अपन आप पतियारा तह कौन कथै कौन सुनने हारा बहु बेअंत ऊच ते ऊचा नानक आपस को आपे पाहूचा जह आप रचियो प्रपंच आकार तेह गुण मैं कीनो बिस्थार पाप पुन तय पई कहावत को नरक को सुर्ग बंशावत आल जाल माया जंजाल होमे मोह परम पै पार दुख सुख मान अपमान अनक प्रकार कियो बखियान आपन खेल आप कर देखै खेल संकोचै तौ नानक एकै जह अवगत भगत तह आप जह पसरै पासार संत प्रताप दोहु पाख का पिह तनी उनकी शोभा उनहु बने आपे कौतुक करै आनंद जोज आपे रास भोग निर्जोग जिस भावै तिस आपन न लावै जिस भावै तिस खेल खिलावै बेसुमार अथा अगंत अतुलै ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोलै सलोक जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तन हार नानक एको पसरिया दूजा कह दृष्टार अष्टपदी आप कथै आप सुनने हार आपे एको आप बिस्तार जात स भावे तां सिष्टो पाए अपने पाणे लए समाए तुम ते भिन्न नहीं किश होए आपन सूत सब जगत परोए जाको प्रभ जियो आप बुझाए सच नाम सोई जन पाए सो समदर्सी तत् का बेता नानक सगल श्रेष्ठ का जेता जी जंत्र सबता कह हाथ दीन दयाल अनाथ पुनाथ जिस राखै तिस कोए न मारै सो मुआ जिस मनहु बिसारै तिस तज अवर कहा को जाए सब सिर एक निरंजन राय जी की जुगत जाकै सब हाथ अंतर बाहर जानो साथ गुण निधान बेअंत अपार नानक दास सदा बलिहार पूरन पूर रहे दयाल सब ऊपर होवत कृपाल अपने करतब जाने आप अंतर जामी रहे हो व्याप प्रतपालै जीवन बहु पांत जो जो रचियो सो तिसै त्यात जिस भावै तिस लय मिलाए भगत कर हर के गुण गाए मन अंतर विश्वास कर मनिया करन हार नानक इक जानिया जन लागा हर एक नाए तिसकी आस न बिरथी जाए सेवक कौ सेवा बन आई हुकम बूझ परम पद पाई इस ते ऊपर नहीं विचार जाके मन बसया निरंकार बंधन तोर पए निरवैर अन दिन पूजे गुर के पैर ए लोक सुखिए परलोक सुहेले
नानक हर प्रभु आपे मिले, साध संग मिलो करहु आनंद, गुण गावो प्रभ परमानंद, राम नाम तत करो विचार, दुर्लभ देखा करो उधार। अमृत बचन हर के गुण गाओ, प्राण तरन का यह सुआओ, आठ पहर प्रभ पेखु नेरा, मिटे अज्ञान बिनसय अंधेरा, सुन उपदेश हृदय बसावो, मन इच्छे नानक फल पावो, हलत पलत दोए ले हो सवार, राम नाम अंतर उरतार, पूरे गुर की पूरी दिखिया, जिस मन बसाय तिस साच परिखिया, मन तन नाम जपो ले बलाए, दुख दर्द मन ते पौ जाए।

तिस ते दूर कहा को जाए, उबरह राखन हार ते आए। निरपाव जपै सगल पाव मिटाए, प्रभ कृपा ते प्राणी छुटाए। जिस प्रभ राखै तिस नाही दुख, नाम जपत मन होवत सुख। चिंता जाए मिटै अहंकार, तिस जन को कोई न पौचन हार। सर ऊपर ठाडा गुर सूरा, नानक ताके कारज पूरा। मत पूरी अमृत जाती दृष्ट, दर्शन पेखत उधरत श्रेष्ठ। चरण कमल जाके अनूप, सफल दर्शन सुंदर हर रूप। धन सेवा सेवक परवान, अंतर जामी पुरख प्रधान। जिस मन बसै सोहोत निहाल, ताकै निकट न आवत काल। अमर भय अमरा पद पाया, साध संग नानक हर त्याया। सलोक ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर बिनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगासु। अष्टपदी संत संग अंतर प्रभ डीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा। सगल समग्री एक स्कट माहे, अनक रंग नाना दृष्टाए। नौनिधि अमृत प्रभ का नाम, देही मैं इसका विश्राम। सुन समाद अनहत तह नाद, कहन ना जाई अचरज बिस्माद। तिन देखिया जिसे आप दिखाए, नानक तिस जन सो जी पाए। सो अंतर सो बाहर अनंत, कट कट ब्या प्रहया भगवंत। तरण माहे आकाश पयाल, सर्ब लोक पूरन प्रतपाल। बान तेन पर्वत है पार ब्रह्म, जैसी आज्ञा तैसा कर्म। पौन पणि बैसंत्र माहे, चार कुंट दै दिसे समाहे। तिस ते भिन्न नहीं कोठाओ, गुर प्रसाद नानक सुख पाओ। वेद पुराण सिमरत मैं देख, शशि अर सूर नक्षत्र मैं एक। बाणी प्रभ की सब को बोलै, आप अडोल न कबू डोलै। सर्ब कला कर खेलै खेल, मोल ना पाइय गुण अमोल। सर्ब ज्योत मैं जाकी ज्योत, तार रहे ओ स्वामी ओत पोत। गुरु प्रसाद परम का नास, नानक तिन मैं एहो विश्वास। संत जना का पेखन सब ब्रह्म, संत जना कै हृदय सब धर्म। संत जना सुनै शुभ बचन, सर्व व्यापी राम संग रचन। जिन जाता तिस किए रहत, सत बचन साधु सब कहत। जो जो होए सोई सुख मानै, करन करावन हार प्रभ जानै। अंतर बसे बाहर पी ओही, नानक दर्शन देख सब मोही। आप सत किया सब सत, तिस प्रभ ते सगली उत्पत। तिस भावे ता करे विस्थार, तिस भावे ता एकंकार। अनक कला लखी नह जाए, जिस भावे तिस लय मिलाए। कवन निकट कवन कहिए दूर, आपे आप भरपूर। अंतर्गत जिस आप जनाए, नानक तिस जने आप बुझाए। सर्ब भूत आप वरतारा, सर्ब नैन आप पेखनहारा। सगल समग्री जाता तना, आपन जस आप ही सुना। आवन जान एक खेल बनाया, आज्ञाकारी कीनी माया। सब कै मध अलिप तो रहै, जो किश कहना सो आपे का है। आज्ञा आवे आज्ञा जाए, नानक जा पावे ता लय समाए। इसते होए सुना ही बुरा, उरै कहो किने का शुकर। आप भला करतूत अत नीकी, आपे जाने अपने जी की। आप साच धारी सब साच, ओत पोत अपन संगराच। ताकी गत मिद कही न जाए, दूसर होए ता सो जी पाए। तिसका किया सब परवान, गुर प्रसाद नानक एहो जान। जो जानै तिस सदा सुख होए, आप मिलाए लय प्रभ सोए। ओह धनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुकत जिस हृदय भगवंत। धन धन धन जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया। जन आवन का इह सुआओ, जन कै संग चित आवै नाओ। आप मुकत मुक्त करै संसार, नानक तिस जन कौ सदा नमस्कार। सलोक पूरा प्रभ आराध्या, पूरा जाका नाओ।
नानक पूरा पाया। पूरे के गुण गाओ अष्टपदी, पूरे गुरु का सुनो उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख, सास सास सिमरो गोबिंद, मन अंतर की उतरे चिंद, आस अनित त्यागो तरंग, संत जना की तूर मन मंग, आप छोड़ बेनती करहो, साध संग अग्न सागर तरहो, हर तन के पर लिहो भंडार, नानक गुर पूरे नमस्कार। खेम कुशल सहज आनंद, साध संग भज परमानंद, नरक निवार उधारो जियो, गुण गोबिंद अमृत रस पियो। चित चितव नारायण एक, एक रूप जाके रंग अनेक, गोपाल दमोदर दीन दयाल, दुख भंजन पूरन कृपाल। सिमर सिमर नाम बारंबार, नानक जी का यह आधार, उत्तम श्लोक साध के बचन, अमूलिक लाल यह रतन। सोनत कमावत हो तो उदार, आप तर लोकह निस्तार, सफल जीवन सफलता का संग, जाके मन लागा हर रंग। जय जय शब्द अनाहद वाजय, सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजय, प्रगटे गोपाल महात कै माथे, नानक उदरे तिन कै साथे। सरन जोग सुन सरनी आए, कर कृपा प्रभ आप मिलाए, मिट गए बैर पये सब रेन, अमृत नाम साध संग लैन। सो प्रसन्न पये गुरुदेव, पूरन होए सेवक की सेव, आल जंजाल बिकारते रहते, राम नाम सुन रसना कहते, कर प्रसाद दया प्रभ तारी, नानक निभी खेप हमारी। प्रभ की उस्तत करहो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत, सुख मने सहज गोबिंद गुण नाम, जिस मन बसाय सोहोत निधान, सर्व इच्छा ताकी पूरन होए, प्रधान पुरख प्रगट सब लोए, सब ते उच पाए अस्थान, बहूर न होवे आवन जान, हर धन खाट चले जन सोए, नानक जिसे प्राप्त होए। खेम सांत रिद नव निध, बुद्ध ज्ञान सर्ब तह सिद्ध, विद्या तप जोग प्रभ ध्यान, ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम इशनान। चार पदार्थ कमल प्रगास, सब कै मद सगल ते उदास, सुंदर चतुर तत् का बेता, समदर्शी एक दृष्टिता, ए फल तिस जन कै मुख पने, गुरु नानक नाम बचन मन सुने, एहो निदान जपै मन कोए, सब युग में ताकी गत होए, गुण गोबिंद नाम धुन बाणी, सिमरत शास्त्र वेद बखाणी। सगल मतांत केवल हर नाम, गोबिंद भगत कै मन बिसराम, कोट अपराध साध संग मिटाए, संत कृपा ते जमते छुटाए, जाके मस्तक करम प्रभ पाए, साध शरण नानक ते आए। जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत, तिस जन आवै हर प्रभ चीत, जन्म मरण ताका दुख निवारै, दुलभ देह तत्काल उधारै। निर्मल शोभा अमृत ताकी बानी, एक नाम मन माहे समानी, दुख रोग बिन से पै परम, साधनाम निर्मलता के कर्म, सब ते ऊचता की शोभा बनी, नानक ए गुण नाम सुख मनी, सब ते ऊच ताकी शोभा बनी, नानक ए गुण नाम सुख मनी, सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना कै मन विश्राम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

करे तन खेहे। गावे को जी लै फिर देहे, गावे को जापै दिसै दूर, गावे को विखै हादरा हदूर, कथना कथी न आवै टूट, कथ कथ कथी कोटी कोट कोट, देदा दे लै दे तक पाहे, जुगा जुगा।

असंख मूर्ख अंध कोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गल वड हत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे, असंख मलेश मल भख खाहे, असंख निंदक सिर करह भार, नानक नीच कह विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लोह, असंख कह सिर।

कोई जा करता सिर ठीको साजे आपे जाने सोई किव करे आखा किव सालाही क्यों वरनी किव जाना नानक आखन सब को आख एक दू एक सियाना वड्डा साहिब वड्डी नाई कीता जाका हुए नानक जी को आपो जाने अगे गया न सूहै पाताला पाताल लख आगासा आगास ओड़क ओड़क भाल थके वेद कह निकवात सहस अठारह कहन कतिबा असलू एक धात लिखा हुए त लिखी है लिखे हुए विनाश नानक वड्डा आखी है आपे जाने आप सालाही ती सुरत न पाइया नदियां अतै वाह पवहै समुंद न जानियह समुंद सह सुल्तान गिरहा सेती माल धन कीड़ी तुलना होवनी जे तिस मनु न विसरह अंत न सिफती कह न अंत अंत न करण दे न अंत अंत न वेखण सुन न अंत अंत न जापै क्या मनमंत अंत न जापै कीता आकार अंत न जापै पारावार अंत कारण किते बिललाहे।

गावन जति सुति संतोखी गावै वीर करारे गावन पंडित पणनर कीसर जुग जुग वेदा नाले गावै मोहनिया मन मोहन सुरगा मच प्याले गावन रत्न पाए तेरे अठ सठ तीर्थ नाले गावै जोत महाबल सूरा गावै गाणी चारे गावै खंड मंडल वर भंडा कर कर रखे तारे सेई तुदनु गावै जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच्चाइव साचा साची नाई है पी होसी जाय न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेखै कीता अपना जिव तिस्ती वडियाई जो तिस भावै सोई करसी हुक्म न करना जाई सो पातशाहो साहा पातशाहिब नानक रह न रजाई मुंदा संतोख शरम पत झोली ध्यान की करह विभूत किंता काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीतै जगजीत आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश भुगत गया दया भंडारण घट घट वाजह नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध अवरा साध संजोग विजोग द्विकार चला वह लिखे आ वह भाग आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाथ जुग जुग एको वेश एका माई जुगत वे आई तिन चेले परवान एक संसारी एक भंडारी चलाई दीवान जिव तिस भावै तिवै चलावै जिव हुवै फुरमान ओह वेखै ओना नजर न आवै बहुता इहो विडान आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश आसन लोए लोए भंडार जो किछ पाया सो एका वार कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्ची की साची कार आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश एक दूजी भाव लख होए लख हो वह लख वीस लख लख गेड़ा आखी है एक नाम जगदीश एत राहे पत पवड़िया चढ़िया वे कीस सुन गल्लाया काश की कीटाया रीस नानक नदरी पाई है कूड़ी

अजमाल मंसूर जोर न सुरती ज्ञान विचार जोर न जुगती छुट्टे संसार जिस हथ जोर कर वेख सोए नानक उत्तम नीच न कोए राती रुती तिती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसार तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी हुए विचार सच्चा सच्चा दरबार तिथै सोहन पंच प्रवान नदरी करम पवै निशान कच पकाई उथै पाए नानक गया जापै जाए धर्म खंड कायो धर्म ज्ञान खंड का आखो कर्म केते पवन पानी वै संतर केते काण महेश केते बरमे काड़त घड़िय रूप रंग के वेश केतिया करम भूमि मेर केते केते धूप देश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्धनाथ केते केते देवी वेश केते देव दान मुन केते केते रतन समुंद केतिया खाणी केतिया बाणी केते पात नरिंद केतिया सुरती शिव केते नानक अंत नंत ज्ञान कंड में ज्ञान प्रचंड तिथै नाद विनोद कोड आनंद शर्म कंड की बाणी रूप तिथै घाड़त घड़िया बहुत अनूप ता किया गल्ला कथिया न जाहे जी को कह पिछे पछताए तिथै घड़िया सुरत मत मन बुद्ध तिथै घड़िया सुरां सिद्धां की शुद्ध कर्म कंड की बाणी जोर तिथै होर न कोई होर तिथै जोत महाबल सूर तिन महराम रहया भरपूर तिथै सीतो सीता महमा माहे ताके रूप न कथने जाहे ना उए मरहे न ठागे जाहे जिनकै राम वसै मन माहे तिथै भगत वसै के लोक करहै आनंद सच्चा मन सोए सच खंड वसै निरंकार कर कर वेखै नदर निहाल तिथै खंड मंडल वर भंड जे को कथै तंत नंद।

हैं, अजा हैं, अनंत हैं, महंत हैं, अलीक हैं, निरसीक हैं, निर्लंब हैं, असंभ हैं, अगम हैं, अजम हैं, अपूत हैं, अछूत हैं, अलोक हैं, असूक हैं, अकर्म हैं, अपर्म हैं, अजीत हैं, अपीत हैं, अबाह हैं, अगा हैं, अमान हैं, निदान हैं, अनेक हैं, विरेक हैं, पुजंग प्रयाचंद नमो सर्वमान्य समस्ति निदानी नमो देव देवे अपेक्षी अपेवे नमो काल काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे अनंगी अनाथे निसंगी परमाते नमो पान पाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत नृत्य नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ती स्वरूपे परपंगी परमाते समस्ती बेपूते कलंकं बिना ने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजेश्वरं परम रूपे नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धे नमो शस्त्रपाणे नमो अस्त्रमाणे नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता अपेक्षी अपरमी अपोगी अपुगते नमो जोग जोगेश्वरं परम जुगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रे देवे सुधर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साह साहं नमो पूप पूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तं स्नानं नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत्र जंत्रं नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सच्चिदानं सर्वं करणासि अनूपे अरूपे समस्तुल निवासी सदा सिद्धदा बुद्धदा वृद्धकर्ता अदो उर्द अर्दं अगंग ओघहर्ता परम परम परमेश्वरं प्रोचपालं सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं अचिदी अपेदी अनामंग कामंग समस्तो पराजी समस्तस्ततामंग तेरा जोर चाचरी चंद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपेय हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेश हैं पुजंग प्रयाचंद अगाते अबाते अनंदी स्वरूपे नमो सर्वमान्ये समस्ति निदाने नमस्त्वं निर्णाते नमस्त्वं प्रमाते नमस्त्वं अगंजे नमस्त्वं अपंजे नमस्त्वं काले नमस्त्वं पाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राजराजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोक रोके नमो शोक शोके नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतं नमो सर्वपीतं नमो सर्वज्ञानं नमो परमतानं नमो सर्वमंत्रं नमो सर्वजंत्रं नमो सर्वदृश्यं नमो सर्वकृत्सं नमो सर्वरंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिजे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं परनासी सदा सर्वदा हृद सिद्धं निवासी चरपड़ चंत्व प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मंग लख कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पानी सर्वंग मानी सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं सर्वंग भुगता सर्वंग जुगता सर्वंग देवं सर्वंग पेवं सर्वंग

सर्वपालक सर्वकालक सर्वकोपन काल जतर ततर विराज ही अवतूत रूप रसाल नाम ठावना जात जाकर रूप रंग नारेख आज गुरु उदार मूरत अजौ नाद शेख देश और न पेश जाकर रूप रेख नाराग जतर ततर दिशा विशा हुए फैलु अनुराग नाम काम बहीन पेखत ताम हूँ नह जाहे सर्वमान सर्वत्र मान सदैव मान पताहे एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल खेल खेल अनंत को फिर एक देव पेव न जाने जे वेद और कतेब रूप रंग न जात पासु जानी के जेब तात मात न जात जाकर जन्म मरण बहीन चक्र बकर फिरे चतर चक मानी पुरती लोक चौदह के बिखै जग जापी जय जाप आद देवनाद मूरत थाप्यो सबै जय था परम रूप नीत मूरत पूरण पुरख अपार सर्व विश्व रच्यो स्वयं भव।

ਚੜਨ ਭੰਜਨ ਹਾਰ ਕਾਲਹੀਨ ਕਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਧਾਮ ਸੋ ਭਰਮ ਰਹਿਤ ਅਭੂਤ ਅਲਖ ਅਭੇਸ਼ ਅੰਗ ਰਾਗ ਨਾ ਰੰਗ ਜਾ ਕਹਿ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਾ ਨਾਮ ਗਰਭ ਗੰਜਨ ਦੁਸ਼ਟ ਭੰਜਨ ਮੁਖ ਦਾਇ ਕਾਮ ਆਪ ਰੂਪ ਅਮਿਕ ਅਨੁਸਤਿਕ ਏਕ ਪੁਰਖ ਭੂਤ ਗਰਭ ਗੰਜਨ ਸਰਵ ਭੰਜਨ ਆਦ ਰੂਪ ਸੂਤ ਅੰਗਹੀਨ ਭੰਗਨ ਆਤਮ ਏਕ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ ਸਰਵ ਲਾਇਕ ਸਰਵ ਕਾਇਕ ਸਰਵ ਕੋ ਪ੍ਰਤਪਾਰ ਸਰਵਗੰਤਾ ਸਰਵਹੰਤਾ ਸਰਵ ਤੇ ਅਨਭੇਖ ਸਰਵ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾ ਜਾਣੀ ਜੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰੇਖ ਪਰਮ ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਣ ਜਾ ਕਹਿ ਨਿਤ ਭਾਖਤ ਨਿਤ ਕੋਟ ਸਿਮਰਤ ਪ੍ਰਾਣ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਯਾ ਵਹਿ ਵਹ ਚਿਤ ਮਤ ਭਾਰ ਚੰਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਣਗਨ ਉਦਾਰ ਮਹਿਮਾ ਅਪਾਰ ਆਸਨ ਅਭੰਗ ਉਪਮਾ ਅਨੰਗ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਿਸ਼ਚਿਨ ਅਨਾਸ ਆਜਾਨ ਬਾਹੂ ਸਾਹਨ ਸਾਹੂ ਰਾਜਨ ਰਾਜ ਭਾਨਨ ਭਾਨ ਦੇਵਾਨ ਦੇਵ ਉਪਮਾ ਮਹਾਨ ਇੰਦਰਾਨ ਇੰਦਰ ਬਾਲਾਨ ਬਾਲ ਰੰਕਾਨ ਰੰਕ ਕਾਲਾਨ ਕਾਲ ਅਨਭੂਤ ਅੰਗ ਆਵਾ ਅਭੰਗ ਗਤ ਮਿਤ ਅਪਾਰ ਗੁਣਗਨ ਉਦਾਰ ਮੁਨਗਨ ਪ੍ਰਣਾਮ ਨਿਰਭੈ ਨਿਕਾਮ ਅਤ ਦੁਤ ਪ੍ਰਚੰਡ ਮਿਤ ਗਤ ਅਖੰਡ ਆਲਿਸ਼ਯ ਕਰਮ ਆਦਰਸ਼ਯ ਧਰਮ ਸਰਬਾ ਪ੍ਰਨਾਢਿਆ ਅੰਡੰਡ ਵਾਢਿਆ ਚਾਚਰੀ ਚੰਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੋਬਿੰਦੇ ਮੁਕੰਦੇ ਉਦਾਰੇ ਅਪਾਰੇ ਹਰਿਯੰ ਕਰਿਯੰ ਨਿਰਣਾਮੇ ਅਕਾਮੇ ਪੂਜੰ ਪ੍ਰਿਆ ਚੰਦ ਚਤੁਰ ਚੱਕਰ ਕਰਤਾ ਚਤੁਰ ਚੱਕਰ ਹਰਤਾ ਚਤੁਰ ਚੱਕਰ ਦਾਨੀ ਚਤੁਰ ਚੱਕਰ ਜਾਨੀ ਚਤੁਰ ਚੱਕਰ ਵਰਤੀ ਚਤੁਰ ਚੱਕਰ ਭਰਤੀ ਚਤੁਰ ਚੱਕਰ ਪਾਲੇ ਚਤੁਰ ਚੱਕਰ ਕਾਲੇ ਚਤੁਰ ਚੱਕਰ ਪਾਸੇ ਚਤੁਰ ਚੱਕਰ ਵਾਸੇ ਚਤੁਰ ਚੱਕਰ ਮਾਨੇ ਚਤੁਰ ਚੱਕਰ ਦਾਨੇ ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ਨਾ ਸਤ੍ਰੈ ਨਾ ਮਿੱਤਰੈ ਨਾ ਭਰਮੰਗ ਨਾ ਪਿਤ੍ਰੈ ਨਾ ਕਰਮੰਗ ਨਾ ਕਾਏ ਅਜਨਮੰਗ ਅਜਾਏ ਨਾ ਚਿੱਤਰੈ ਨਾ ਮਿੱਤਰੈ ਪਰੇ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰੈ ਪ੍ਰਥਿਸੈ ਅਦਿਸੈ ਅਦ੍ਰਿਸੈ ਕ੍ਰਿਸੈ ਭਗਵਤੀ ਛੰਦ ਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਥਤੇ ਕਿਆ ਚਿਜ ਦੇਸੈ ਕਿਆ ਭਿਜ ਪੀਸੈ ਕਿਆ ਗੰਜ ਕਰਮੈ ਕਿਆ ਭੰਜ ਭਰਮੈ ਕਿਆ ਭਿਜ ਲੋਕੈ ਕਿਆ ਦਿਤ ਸੋਕੈ ਕਿ ਅਵਧੂਤ ਵਰਨੈ ਕਿ ਬਿਭੂਤ ਕਰਨੈ ਕਿ ਰਾਜੰਗ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮੰਗ ਤੁਜਾ ਹੈ ਕਿਆ ਸੁਖ ਵਰਨੈ ਕਿ ਸਰਬਾ ਅਪਰਨੈ ਕਿ ਜਗਤੰ ਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਛਤਰੰ ਛਤਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਮੰਗ ਸਰੂਪੈ ਕਿ ਅਨੁਭਵ ਅਨੁਪੈ ਕਿ ਆਦਿ ਅਦੇਵੈ ਕਿ ਆਪ ਅਭੇਵੈ ਕਿ ਚਿਤਰੰਗ ਬਹੀਨੈ ਕਿ ਕੈ ਅਧੀਨੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ੀ ਰਜ਼ਾ ਕੈ ਰਹੀਮੈ ਰਿਹਾ ਕੈ ਕਿ ਪਾਕ ਬੇਐਵੈ ਕਿ ਗੈ ਭੁਲ ਗੈਵੈ ਕਿ ਅਫੁਲ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਨ ਸਾਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਨ ਕੁਨਿੰਦ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ੀ ਦਿਹੰਦ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ਼ਕ ਰਹੀਮੈ ਕਿ ਕਰਮੰਗ ਕਰੀਮੈ ਕਿ ਸਰਵੰਗ ਕਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੰਗ ਦਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਤਰ ਮਾਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਤਰ ਦਾਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਤਰ ਗਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਤਰ ਭਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਤਰ ਦਿਸੈ ਕਿ ਸਰਵਤਰ ਭੇਸੈ ਕਿ ਸਰਵਤਰ ਰਾਜ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਤਰ ਸਾਜ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਤਰ ਦੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਤਰ ਲੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਤਰ ਜਾ ਹੋ ਕਿ ਸਰਵਤਰ ਭਾ ਹੋ ਕਿ ਸਰਵਤਰ ਦਿਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਤਰ ਭਿਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਤਰ ਕਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਤਰ ਪਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਤਰ ਹੰਤਾ ਕਿ ਸਰਵਤਰ ਗੰਤਾ ਕਿ ਸਰਵਤਰ ਭੇਖੀ ਕਿ ਸਰਵਤਰ ਭੇਖੀ ਕਿ ਸਰਵਤਰ ਕਾਜ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਤਰ ਰਾਜ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਤਰ ਸੁਖ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਤਰ ਭੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਤਰ ਤ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਤਰ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਤਰ ਦਿਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਤਰ ਭਿਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਤਰ ਮਾਨਿਆ ਸਦੈਵ ਪ੍ਰਧਾਨੇ ਕਿ ਸਰਵਤਰ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਸਰਵਤਰ ਥਾਪਿਆ ਕਿ ਸਰਵਤਰ ਭਾਨੈ ਕਿ ਸਰਵਤਰ ਮਾਨੈ ਕਿ ਸਰਵਤਰ ਇੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਤਰ ਚੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੰਗ ਕਲੀਮੈ ਕਿ ਪਰਮੰਗ ਫਹੀਮੈ ਕਿ ਆਖਿਲ ਅਲਾਮੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਲਾਮੈ ਕਿ ਹੁਸਨਲ ਵਜ਼ੂ ਹੈ ਤਮਾਮ ਉਲ ਰਜ਼ੂ ਹੈ ਹਮੀਸਲ ਸਲਾਮੈ ਸਲੀਖਤ ਮੁਦਾਮੈ ਗਨੀਮੁਲ ਸਿਕਸਤ ਹੈ ਗਰੀਬੁਲ ਪਰਸਤ ਹੈ ਬਿਲੰਦੁਲ ਮਕਾਨੈ ਜ਼ਮੀਨੁਲ ਜ਼ਮਾਨੈ ਤਮੀਜ਼ੁਲ ਤਮਾਮੈ ਰਜ਼ੂਅਲ ਨਿਦਾਨੈ ਹਰੀਫੁਲ ਅਜ਼ੀਮੈ ਰਜ਼ਾਇਕ ਯਕੀਨੈ ਅਨੇਕਲ ਤਰੰਗ ਹੈ ਅਭੇਦ ਹੈ ਅਭੰਗ ਹੈ ਅਜੀਜੁਲ ਨਿਵਾਜ ਹੈ ਗਨੀਬੁਲ ਖਿਰਾਜ ਹੈ ਨਿਰੁਕਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤ੍ਰਿਮੁਕਤ ਵਿਭੂਤ ਹੈ ਪ੍ਰਭੁਗਤ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ਸੁਯੁਗਤ ਸੁਦਾ ਹੈ ਸਦੈਵੰਗ ਸਰੂਪ ਹੈ ਅਭੇਦੀ ਅਨੂਪ ਹੈ ਸਮਸਤ ਉਪਰਾਜ ਹੈ ਸਦਾ ਸਰਵਸਾਜ ਹੈ ਸਮਸਤੁਲ ਸਲਾਮ ਹੈ ਸਦੈਵ ਲਕਾਮ ਹੈ ਨਿਰਵਾਧ ਸਰੂਪ ਹੈ ਅਗਾਧ ਹੈ ਅਨੂਪ ਹੈ ਓਂਗਾਦ ਰੂਪ ਹੈ ਅਨਾਧ ਸਰੂਪ ਹੈ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੀ ਤ੍ਰਿਭੰਗੀ ਤ੍ਰਿਕਾਮੀ ਤ੍ਰਿਵਰਗੰ ਤ੍ਰਿਵਾਧੇ ਅਗੰਜੇ ਅਗਾਧੇ ਸੁਭੰਗ ਸਰਭਾਗੀ ਸੁਸਰਭਾਨੁਰਾਗੇ ਤ੍ਰਿਭੁਗਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਛਿਜ ਹੈ ਛੂਤ ਹੈ ਕਿ ਨਰਕੰ ਪ੍ਰਨਾਸ ਹੈ ਪ੍ਰਿਥੁਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੈ ਨਿਰੁਕਤ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ਸਦੈਵੰ ਸਦਾ ਹੈ ਵਿਭੁਗਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਪ੍ਰਯੁਕਤ ਅਨੂਪ ਹੈ ਨਿਰੁਕਤ ਸਦਾ ਹੈ ਵਿਭੁਗਤ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ਅਨੁਕਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਪ੍ਰਯੁਕਤ ਅਨੂਪ ਹੈ ਚਾਚਰੀ ਚੰਦ ਅਭੰਗ ਹੈ ਅਨੰਗ ਹੈ ਅਭੇਦ ਹੈ ਅਲੇਖ ਹੈ ਅਭਰਮ ਹੈ ਅਕਰਮ ਹੈ ਅਨਾਦ ਹੈ ਜੁਗਾਦ ਹੈ ਅਜੈ ਹੈ ਅਵੈ ਹੈ ਭੂਤ ਹੈ ਅਧੂਤ ਹੈ ਅਨਾਸ ਹੈ ਉਦਾਸ ਹੈ ਧੰਦ ਹੈ ਅਬੰਧ ਹੈ ਭਗਤ ਹੈ ਵਿਰਕਤ ਹੈ ਅਨਾਸ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ
निचिंत है, सुनित है, अलिख है, अधिक है, अलेख है, अपेख है, अटा है, अगाह है, असंभ है, अगम है, अनिल है, अनाद है, नित्य है, सुनित है, अजात है, अजाद है, चर परचंत व प्रसाद, सर्वंग हंता, सर्वंग गंता, सर्वंग ख्याता, सर्वंग ज्ञाता, सर्वंग हर्ता, सर्वंग कर्ता, सर्वंग प्राणं, सर्वंग त्राणं, सर्वंग कर्मं, सर्वंग धर्मं, सर्वंग युक्ता, सर्वंग मुक्ता, सावल छंद त्व प्रसाद, नमो नर्क नासे सदैवंग प्रकाशे, अनंगं स्वरूपे, अपंगं बेपूते, परमात्मं परमाते, सदा सर्वसाथे, अगाध स्वरूपे, निर्वाध विपूते, अनंगी अनामे, त्रिपंगी त्रिकामे, निरपंगी स्वरूपे, सर्वंगी अनुपे, न पुत्रै न पुत्रै, न सत्रै न मित्रै, न तातै न मातै, न जातै न पातै, निरसाकं सरी कहे, अमितो अमी कहे, सदैवं प्रभाय, अजय है अजाह है भगवती चंद्व प्रसाद, कि जाहर जहूर है, कि हाजर हजूर है, अमिसुल सलाम है, समस्तुल कलाम है, कि साहिब दिमाग है, कि हुस्नल चिराग है, कि कामल करीम है, कि राजक रहीम है, कि रुजी देहांद है, कि राजक रहिंद है, करीमुल कमाल है, कि हुस्नल जमाल है, गनीमुल किराज है, गरीबुल निवाज है, हरिबुल फिकन है, हिरासुल फिकन है, कलंक प्रनाश है, समस्तुल निवास है, अगंजुल गनीम है, रजायक रहीम है, समस्तुल जुबा है, कि साहिब किरा है, कि नरकं प्रणाश है, बहस्तुल निवास है, कि सर्वुल गवन है, हमीस्तुल रवन है, तमामुल तमीज है, समस्तुल अजीज है, परम परमीश है, समस्तुल अधीश है, आदिशुल अलेख है, हमीस्तुल अपेख है, जमीनुल जमा है, अमीकुल इमा है, करीमुल कमाल है, कि जुरत जमाल है, कि अचलंग प्रकाश है, कि मितो सुभाष है, कि अजब स्वरूप है, कि मितो विभूत है, कि मितो पसा है, कि आत्म प्रभा है, कि अचलंग अनंग है, कि मितो अपंग है, मत पार चंत्व प्रसाद, मुनमन प्रणाम, गुनगन मुदाम, अरबर अगंज, हर नर परपंज, अनगन प्रणाम, मुनमन सलाम, हर नर अखंड, बरनर अमंड, अनुभव अनास, मुनमन प्रकाश, गुनगन प्रणाम, जलतल मुदाम, अंचिज अंग, आसन अपांग, उपमा पार, गत मित उदार, जलतल अमंड, दिस्विस अपंड, जलतल महंत, दिस्विस बेअंत, अनुभव अनास, त्रिकर्तुरास, आजान बाहु, इक्कै सदाहु, ओंकारास, कथनी अनाद, खलखंड खयाल, गुरबर अकाल, कर कर प्रणाम, चित चरण नाम, अनछिज गात, अजिज न बात, अनचंज गात, अनरंज बात, अनटुट भंडार, अनडट अपार, आडीठ धर्म, अत टीठ कर्म, अनब्रन अनंत, दाता महंत, हर बोल मना चंद्व प्रसाद, करुणालय है, अरकालय है, कलखंडन है, महमंडन है, जगतेश्वर है, परमेश्वर है, कलकारण है, सर्ववारण है, तृथ के तरण है, जग के करण है, मन मान्य है, जग जान्य है, सर्वं पर है, सर्वं कर है, सर्वपाश्य है, सर्वनाश्य है, करुणा कर है, विश्वं पर है, सर्वेश्वर है, जुगतीश्वर है, ब्रह्मंड से है, कलखंड से है, परते पर है, करुणा कर है, जपा जप है, तपा तप है, अकृता कृत है, मृता मृत है, मृता मृत है, करुणा कृत है, कृता कृत है, धरणी तृत है, अमतेश्वर है, परमेश्वर है, अकृता कृत है, मृता मृत है, जबा कृत है, मृता मृत है, निर्नायक है, खलकायक है, विश्वम पर है, कुरुणालय है, निर्पनायक है, सर्पायक है, पापंजन है, अरगंजन है, रिपतापन है, जप जापन है, अकलंकृत है, सर्वाकृत है, कर्ता कर है, हरता हर है, परमात्म है, सर्वात्म है, आत्म बस है, जस के जस है, भुजंग प्रयाचंद, नमो सूर्य सूर्ये, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो बृंद बृंदे, नमो बीज बीजे, नमो रासं तामसं शांत रूपे, नमो परम तत्तंग तत्तंग स्वरूपे, नमो जोग जोगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्रे, नमो ध्यान ध्याने, नमो युद्ध युद्धे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो पूज पूजे, नमो पान पाने, नमो कलह कर्ता, नमो शांत रूपे, नमो इंद्र इंद्रे, अनादंग विपूते, कलंकार रूपे, अलंकार अलंके, नमो वास आसे, नमो बांक बंके, अपंगी स्वरूपे, अनंगी अनामे, त्रिपंगी त्रिकाले, अनंगी अकामे, कचरी चंद, अजय अलय अपय अभय अपू अजू अनास कास अगंज पंज अलख पख अकाल दयाल अलेख अपेख नाम काम अगाह अटाह
अनाथे परमाथे अजो नियम निराग नरंगे न रूपे नरेखे अकर्मंग परमंग गंजे अलेखे पुजंग प्रया छंद नमस्तुल परनामी समस्तुल परनासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे निरकामंग विभूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग परनासी सुधर्मंग विभूते सदा सचिदानंद सत्रंग परनासी करिमुल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजाय विभूते गजाय विघ्निमे हरियं करियं करिमुल रहिमे चतुर चक्रवर्ती चतुर चक्र भुगते स्वयं भव शुभं सर्वदा सर्व जुगते दुकालं परनासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं विभूते दुकालं परनासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं विभूते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद पातशाही दसवीं त्वा प्रसाद सवैये श्रावक शुद्ध समूह सिद्धान के देख फिरो कर जोग जति के सूर सुरार्दन शुद्ध सुदादिक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखित प्राणपति के श्री भगवान की पाए कृपा हूँ ते कृति बिने कृति के माध्यम तंग जरे जर संग अनूपो तंग सुरंग सुवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन को जात निवारे भारी भजान के भूप भली बिदन आवत शीस न जात विचारे इति भय तो कहा भय भूप तंत को नांगे पाए पधारे जीत फिर सब देश दिशान को बाजत ढोल मृदंग नगारे गुंजित गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत पवेक भगवान के भूपत कौन घने नहीं जात बिचारे श्री पश्री भगवान भजे बिन अंत को अंत के ताम सिधारे तीर्थ नान दया दमदान सुसंजम नेम अनेक बसिख है पेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सुबान के भिख है पावन आहार जति जतार सब सुविचार हजार के दिख है श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लिख है शुद्ध सिपाह दुरंत दुबाह सुशासना दुर्जान दलेंगे भारी गुमान भरे मन में कर पर्वत पंख हले न हलेंगे तोर अरीन मरूर मवासन मातिम तंगन मान मलेंगे श्री पद श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर अपार बड़े बरियार अभिचार सा अभिचार है सार की तार पछैया तोर्त देश मलिंद मुवासन माते ज्ञान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोड़ नहार सो बात नहीं चकचार लवैया साहिब श्री सब को शरणायक जाचक नेक सुवेक दिवैया दानव देव फनिद निशाचर भूत पवेक भवान जपेंगे जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे पुन परतापन बाढ़ जैत तुन पापन के बहु पुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिर जग सत्र सब अवलोक चपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र निराधव जौन त्रिलोक को राज करेंगे कोट स्नान गजा दिक दान अनेक स्वंबर साज भरेंगे ब्रह्म हे सर्विष्ण सची पत अंत पसे जम्फास परेंगे जे नर श्री पत के प्रस है पग ते नर फिर न देह तरेंगे कहा भयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहे हो भक्त्यान लगायो नाथ फिरियोली सात समुन्द्रन लोक गयो पर लोक गवायो बास कियो बखियान सो बैठ कै ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो साच कहूं सुन लेहु सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो काहू लै पाहन पूछ धरियो सिर काहू लै लिंग गरे लटकायो काहू लख्यो हर वाची दिशा मह काहू पचा को शीस निवायो को बतान को पूजत है पस को मृतान को पूजन तायो पूर क्रिया और जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो को बतान को पूजत है पस को मृतान को पूजन तायो पूर क्रिया और जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दै रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तव चरणन मन रह हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सबै तुम काव हो आप हाथ दै मोहे बचाव हो सुखी बसै मोरो परवारा सेवक सिख सबै करतारा मूर रक्षा निज कर दै करिय सब बैरन को आसंगरिय पूर्ण होए हमारी आशा तुर भजन की रह प्यासा तुम्हें चाड़ कोई अवर न त्याऊं जो बरचाऊं सो तुम ते पाऊं
सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है, आप हाथ है मुझे वरी है, मरण काल का त्रास निवरी है, पूजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जू करे हो रक्षा, राख लो महिराखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे, दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दशकंता, काल पाए ब्रह्मा बाप तरा, काल पाए शिव जू अवतरा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तुमासा, जवन काल जोगी शिव की यो, वेद राज ब्रह्मा जूती यो, जवन काल सब लोक सुवारा, नमस्कार है ताहे हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देव दै जच्चन उपजायो, आदंते कै अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा, नमस्कार तिसी को हमारी, सकल प्रजा जिन्हें आप सुवारी, शिव कन को सब गुण सुख दियो, शत्रण को पल मुँह बद कियो, कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंचर स्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एके की पीर पछाने, कट कट के पट पट की जाने, जब उदकर्क करा कर तारा, प्रजा तर तब देह अपारा, जब आकर्क कर तो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ, जेते बदन सिर सब तार, आप अपनी बूझो चार, तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत भेद भेद अर आलम, निरंकार निर्भकार निर्लंबो, आद अनिल अनाद असंभूता, का मूड उचारत भेदा, जाकु भेव न पावत भेदा, ताको कृपाहन अनुमानत, महामूड कछ भेद न जानत, महादेव कौ कहत सदा, शिव निरंकार का चीनत न भेव, आप अपनी बुद्ध है जीती, वर्णत भिन्न भिन्न तुह तेती, तुमरा लका न जाय पसारा, के विसजा प्रथम संसार, कै रूप अनूप स्वरूप, आरंक भयो राव कई भूपा, अंड जे रसित जगिनी, उत्पुज खान बहुर रच दिनी, कऊ फूल राजा हवे बैठा, कऊ सिमट भयो शंकर कैठा, शिग्री श्रेष्ठ दिखाय चम भव, आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिखो वार सिख संगरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रनकाता, जे आस तुझ तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुख तहवे मरे, पुरख जमन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सुटारे, जो कल को एक बार ते है, ताके काल निकट नह है, रक्षा हुए ताहे शुभ काला, दुष्ट अरिष्ट रह तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाहे निहरिहु, ताके ताप तनक मैं हरिहु, रिद सिद्ध कर्म सब हुई, दुष्ट छाच वसक न कोई, एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास देता है उबारा, जिन नर नाम तिहारो कहा, दारिद दुष्ट दुख ते रहा, कड़ केत में शरण तिहारी, आप हाथ दे लिहो उबारी, सर्व ठौर मोहु सहाई, दुष्ट दुख ते लिहो बचाई, कृपा करे हम पर जगमाता, ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता, किलविक सकल देह को हरता, दुष्ट दुखिन को छय करता, श्री अस्तु जपै दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन वांछत फल पावै सोई, दुख न दिसै व्याप्त कोई डेल, सुनै गुंग जो याहे सुरस न पावई, सुनै मूढ़ चित लाए चतुरता आवई, दुख दर्द पौ निकट न तिन्नर के रहै, हो जो या की एक बार चौपाई को कह, चौपाई संबत सत्रह सहस पनी जय, अर सहस कुंतीन कही जय, भाद्र सुदी अष्टमी रवारा, तीर सद्रव ग्रंथ सुधारा सवैया,

साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै, घर सुभागै शब्द वाजे कला जित करतारिया। पंच दूत दुवस कीते काल कंटक मारिया।

बखानी। हर हर नित करह रसना, कहा कछु न जानी। चित जिन का हिर लिया माया, बोलन पैर वाणी। कह नान सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी। गुर का शब्द रतन है, हीरे जित जड़ाऊ। शब्द रतन जित मन लागा, एहो हुआ सुमाऊ। शब्द सेती मन मिलया, सच्चे लाया पाहू। आपे हीरा रतन आपे, जिसनु दे बुझाए। कह नानक शब्द रतन है, हीरा जित जड़ाऊ। शिव सकता पुपाए, कह करता आपे हुकुम रताए। हुकुम रताए आवे कह, गुरमुख सह बुझाए। तोड़े बंधन हुवै मुक्त, शब्द मन वसाए। गुरमुख जिसनु आप करे, सो हुवै एक स्यों लिवलाए। कह नानक आप करता आपे हुकुम बुझाए।

तिस भाणा तज मिया परिवार भला पाया लिव छुटकी लगी तृष्णा माया मरवरताया हिमाया जितर विसर मुह पजै भाउ दूजा लाया कह नान गुर प्रसादी जिना लिव लागी तिन विचे माया पाया हरियाप मुल कह मुल न पाया जाए मुल न पाया जाए किसै विटहु रहे लोक बिल लाए ऐसा सतगुर जे मिलै तिसनु सिर सौपीऐ विचहु आप जाए जिस दा जीव तिस मिल रह हर वसै मन आए हर आप मुल कह भाग तिना के नानका जिन हर पल्लै पाए हर आस मेरी मन बन जारा हर रास मेरी मन बन जारा सतगुर ते रास जानी हर हर नित जपे हो जी हो लाह खटे हो दिहाड़ी एव धन तिना मिलया जिन हर आपे भाणा कह नानक रास मेरी मन हुआ बनजारा ए रसना तू अन रस राच रही तेरी प्यास न जाए प्यास न जाए होरत कितै जिचर हर रस पल्लै न पाए हर रस पाए पल्लै पीए हर रस बौड़ न तृष्णा लागै आए एहो हर रस करमी पाईए सतगुर मिलै जिसे आए कह नानक होर अन रस अविसरे जा हर वसै मन आए ए शरीरा मेरिया हर तुम मह जोत रखी ता तू जग मह आया हर जोत रखी तुद विच ता तू जग मह आया हर आपे माता आपे पिता जिन जियो पाए जग दिखाया गुर प्रसादी बुझिया ता चलत हुआ चलत नदरी आया कह नानक सृष्ट का मूल रचिया जोत राखी ता तू जग मह आया मन चाओ भया प्रभ आगम सुनिया हर मंगल गाओ सखी गृह मंदिर बनिया हर गाओ मंगल सखिए शोभ दुख न व्यापे गुर चरण लागे दिन सुभागे आपना फिर जापे अनहत बाणी गुर शब्द जानी हर नाम हर रस भोगो कह नानक प्रभा मिलिया करण कारण जुगो ए शरीरा मेरिया इस जग में आए कह क्या तुद कर्म कमाया के कर्म कमाया तुद शरीर राजा तू जग में आया जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन न वसाया गुर प्रसादी हर मन वसिया पूर्व लिखिया पाया कह नानक एहो शरीर परवान हुआ जिन सतगुर स्यों चित लाया ए नेत्र हो मेरे हो हर तुम मह जो तरी हर बिन वरण देखो कोई हर बिन वरण देखो कोई नदरी हर निहालिया एहो वे संसार तुम देख दे एहो हर का रूप है हर रूप नदरी आया गुर प्रसादी बुझ आ जा वेखा हर इक है हर बिन वर न कोई कह नानक नेत्रंद से सतगुर मिले दिव दृष्ट होई हे श्रवण हो मेरे हो साचै सुनने नो पठाए साचै सुनने नो पठाए शरीर लाए सुनहु सत बाणी जित सुनी मंतन हरिया हुआ रसना रस समानी सचल कबिड़ानी ताकि गत कही न जाए कह नानक अमृत नाम सुनहो पवित्र हो सच है सुनै नो पठाए हर जियो गुपांदर रख कह वाजा पवन बजाया बजाया वाजा पाऊ नौ द्वारे प्रगट किए दसवां गुप्त रखाया गुरुद्वारे लाए भावनीक न दसवां द्वार दिखाया तहनेक रूप नव नव निध तिष्टांत न जाई पाया कह नानक हर प्यारे जियो गुफांदर रख कह वाजा पवन बजाया एहो साचा सोहेला सच है कर गावहु गावहु ता सोहेला कर सच है जिथे सदा सच त्यावहे सचो त्यावहे जा तुद भावहे गुरमुख जिना बुझावहे एहो सत सपना का खसम है जिस बख्शे सो जन पावहे कह नानक।

योगी चुंजते अलख नाम करतार सूखम मूर्त नाम निरंजन काया का आकार सत्याम संतो गुपजय देने के विचार दे दे मंगल सचा गुणा सो करे संतार चूरा जा रहा कुड़िया राखा रहा विकार एक हुंदा खाए।

गुरु गुरुवाच अंतर जामी सतगुरु तंत साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी दर दी हाजिर पड़दे हैं बेअंत गुरसिख माई पायो आप जी दी बंदे सत्कार जो बेअंत माया बेटा पड़दे आप जी सारण सिखी दान प्रोसादान छन्ना कुना प्यार रखना खजाने पर पकड़ने सो आओ गुरु प्यारी सत्संग जी कीर्तन की इनक सेवा प्रवान करनी हुई भला चुका दिखी मकानी आओ अगले प्रोग्राम सरवण करी सत्कार योग ज्ञानी गुरमेल सिंह जी उन्हां पासो अज दे श्री मुखाक दे विचार गुर इतिहासिक इतिहास सरवण करी दस फतेह प्रवान करो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

तन जड़ाई अपने लहा सो सज्जन टोल। सज्जन सच्चा पातशाह सिर संद साहो, जिस पास बैठिया सोही सबना दा वेसाहो।

राग रतन परवार परिया शब्द गावणिया या सब दोता गावो हरि केरा मन जनी वसाया।

का सर्व सुख होगा। जहां जहां गुरु खालसा चार सर चरिया है, देह ते की फतेह, वृद की पै, पंथ की जीत, श्री साहब जी सहाय, खालसा जी की बोलबाले बोलो जी वाहे गुरु। सिखा नु सिखी दान, केस दान, रैत दान, विवेक दान, साह दान, भरोसा दान, दाना सिर दान, नाम दान, श्री अमृतसर साहब दर्शन सुना, क्योंकि चंदे मुंगे जुग जुग अटल, धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु। सिखा दा मन नी मां मत दूजी, मत पत के राखे आप वाहे गुरु। गुरु की भाई पंद सदस्य आज दया जी गुरुद्वारा ननकाना साहब पंजा साहब धूर गुरुद्वारे गुरुधाम, जिन्हों तो आप पंथ में छोड़िया गया, उन्होंने खुले दर्शन दीदार इतिहास मार सदा अपने खालसा जी बख्शो। ये ओटिया की ओट गुरु, न्यासरिया आसरे गुरु, धन धन गुरु ग्रंथ अवतार, दोए कर जोड़ करो अरदास, खुद भावे तान दास। हे गरीब नवाज जी आपके चरण कामना अरदास की आपने बख्शिश की है, अमृत वेले प्रकाशमान हो संगत दर्शन निहाल के दरदार जीओ, दर्शन दारे बख्शिश की दरदार जीओ। गरीब नवाज बेहंत बाणिया के पाठ ऐस वैरागी संघ ने आप नजारसा की वाद कीर्तन किए हैं, विद्वान भी उन्होंने अजय हुक्म नामे के साथ तैयार करिए, कृपा करो हुई भुला चुका माफी बख्शो, पढ़ी हुई बाणी सोच के सच कर बाणी का भाव सारिया संगत हिरदे मिसाल की कृपाता करो जी, अगो तो शुद्ध पित्र बाणी चाली बार बुद्धि बख्शिश करो। गरीब नवाज इस खुशी में आप दिन बख्शिया दातों में गुलाब शादी देखा तैयार करें हाजिर दार, आप जी भोग लाओ शीत प्रसाद सात संगत की रसना लायक होवे, जो जी सके स्वास स्वास आप जी का पितर नाम जप, बख्शिश करो दतार, दुखा कलेशा रोगों का नाश करो, सुखा का प्रकाश करो, देश देर का बख्शिश करो जी। कृपा करो गरीब नवाज आप दिन बख्शिया दातों लग रहे चुट सारे प्रवानित कर ली, आप चरणा सेवा कर रहे सारे टहरिया सिंह सिंगड़िया तंदुरुस्ती बख्शो, चढ़ करा बख्शो, सदा इसे तरह अपने चरणा सेवा की भान बख्शा करो जी। तंत्र गुरु दरबार पिता जी आदि चरण कामना जगदास बख्शिया दर कर सो दास, बीबी करमजीत कौर जन्मदिन की खुशी में बेहतर मारा खाल प्रवान करो, बख्श कर दें बीबी करमजीत तंदुरुस्ती बख्शो, लंबी आयु बख्शो, खुशी की नाम भी दास बख्शी किता, चरणा जोड़ बन जा प्यार बख्शी कृपा अदा कर रही, सारे परिवार भी सुखा चढ़ी कला करने की कृपा अदा करो जी। सुरजीत सिंह चढ़ी कला वास्ते बेहतर मारा खाल प्रवान करो, बख्शी करो सुरजीत सिंह ने सारे परिवार दिता सुख शांति, चाटी कला करनी कमाइया सफल करो, घर जवाब बख्त आप राज रखो, सेवक तंदुरुस्ती बख्शा की बात करो जी। गिरिवाज अमरजीत सिंह देर उत्साह वास्ते तंदुरुस्ती वास्ते बेनती करते हैं, बिल्कुल अलग हल रफ्तार प्रदान करो, बख्शिश कर लें अमरजीत सिंह तंदुरुस्ती बख्शो, लंबी आयु बख्शो, करमदेश कौम की आज्ञा कर बख्शा देता है, गिरिवाज कृपा करो अमरजीत सिंह सदा चाटी कला बख्शा बारा करो, चाटी कला बख्शा की बात करो जी। दरदार जी भाई ओंकार सिंह दरदार पिता आचार सेवादार जिन्हें जन्म देते बेहत मारा खाद रफ्तार प्रवान करो, बख्शिश करने हो भाई उकार संग्रह तंदुरुस्ती बख्शो, लंबी आयु बख्शो, गुरसिखी नाम दास बख्शार, सदा इस अपने जन सेवा की भावना चाटी कला बख्शा की बात करो, चाटी कला बख्शो दार सेव कहते सारे परिवार तंदुरुस्त चाटी कला करनी कमाइया सफल करो, कारोबार की वादा बख्शो दफ्तार की आपदा पर करो दार, कृपा करो सदा परिवार चैनल जोड़ने की बात करो जी। गुरु जी बख्श करो दार दियो अमृत वेले तो लैके दरती आई साफ संकत हाजिर दर प्रवान करो, घड़िया लिखे लाओ सागतों का दर से तीन फुल भेटा प्रवान, शुभकामना पूर्ण करो जी। गुरु भाई कृपा करो दता खास मन से कौम एक तत्वाग प्याज बख्शी करके सत दो दान बख्शो, चैनल जोड़ो प्रवान जा प्यार बख्शो, हर मैदान जवान फतेह बख्शन पैदा करो जी। गुरु जी महाराज दूर दराज कर बैठी लाइव सदा की तरह करनी सारी संगत की हाजिर प्रवान करो, घड़िया लिखे लाओ उतार अपने कृपा की संगत उद बख्शे सगत आपने चाहना धनबाद कर दें, शुक्रिया अदा करते हैं बेहद माया ऑनलाइन गुरु घर गुरु घर सेवा संघ सगता माया भेटा कर जाने प्रवान करो, बच्चा साहब ने कमाइया सब करो घर वादार, सब संगत दुभकामनावान मुद्दा आप पूरी करो जी, तार बख्शिश करो, सेवा प्रवान करो, उन्हें चुका बाही बख्शो, पेतर गुनामी बख्श करके बड़े लड़ीवार सहज पाठ करने वास्ते आगे बख्शो, शुद्ध पुत्र सेवा लाने की बाधा दतार, रहते कार सवार के चैनल दरवाजे बनाओ, से प्यारे मनु जिन्हें मैं आपका नाम जता नानक नाम चढ़ती कला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह, दोहरा आज्ञा भैया काल की तभी चलायो, सब सिखन गुरु हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मान्यो बरगट गुरां की दे, जो प्रभु को मिल बोझ है खोज जवद मैन, राज करेगा खालसा आकी रहे ना कोई, ख्वार हो सब मिलेंगे बजे शरण जो हो,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ

विण तुद हो रजे मंगना सिर दुखा कै दुख देह नाम संतोखिया पुत्र मन की भुख गुरवाण तेण हरिया कीतेया नानक क्या मनुख सो कहो टल गुर सेवी अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसे गुरु कै

मन मरै धात मर जाई, बिन मन मुए कैसे हर पाए। एहो मन मरै दारू जाने कोय, मन शब्द मरै बूझै जन सोय। जिसनो बख्शे हार दे वडियाई, गुर प्रसाद वसै मन आई रहाऊ।

लेखा चित्र गुप्त जो लिखिया सब छूटी जम की बाकी हर के संत जप्यो मन हर हर लग संगत।

पढ़ हर लिख हर जप हर गाऊ हर भौ जिल पार उतारी मन बचन हृदय ते आए हर हुए संतुष्ट इब भण हर नाम मुरारी मन जपिए हर जगदीश मिल संगत साधु मीत सदा आनंद हुए दिन राती हर कीरत कर बनवारी रहाओ हर हर करी।

बिनस जाए परमाई, अनद रूप रव्यो सब मधे, जत कत पेखौ जाई। तुम दयाल कृपाल कृपा निद, पतित पावन गोसाई, कोट सुख आनंद राज पाए, मुख ते

प्रसाद प्रसाद हर हर हर गाए, बिखे ब्याद तब हूटो रहाओ। नह सुनिए नह मुखते बकिए, नह मुह है ओ डिठी, ऐसी ठगौ

अंध गुब्बार हर का नाम संख उजियारा जह पन तेरा कोना सजानू हर का नाम तय नाल पछानू जय है महाप्याण तत्व हुकाम तय हर के नाम की तुम परछाम जात रखावना काज आप रखे तय नानक हर रमृत रखे भगजना की वर्तन नाम संजना कह मन विश्राम हर का नाम दास की ओट हर का नाम द्रेजन कोट हर जस करत संत दिन रात हर कर सात कुमात हर जन कह हर नाम निदहन पार रंजन की नो दान मन तन रंग रति रंगे कह नान जन कह वृत विवेक है हर का नाम जन को मुक्त जुगत हर कह नाम जन को तृप्त भगत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जप को प्र नाम भंग हर का नाम जन की उड़ियाई हर का नाम जन शोभा पाई हर का नाम जन को भोग जोग हर नाम जपत कुछ नाही वियोग जन राता हर नाम की सेवा नानक पूजे हर हर देवा हर हर जन कह मन खजीना हर तन जन को आप प्रदीना हर हर जन कह उठ सतानी हर प्रताप जना उना जानी औत पोजन हर सते सुन समाध नाम रसमाते आठ पैर जन हर जपे हर का भगत प्रोट नहीं छपे हर की भगत मुकत बहो करे नान जन संकेते त्रे हर जाते हर को नाम काम दिहन हर गुणगाम सावते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर दुख लता नाम की महिमा संत हृदवस है संत प्रताप दुर्सवन सह संत का समुण पागी पाई है संत की सेवा नाम त्याई है नाम तुलक चवरना होए नानक गुरमुख नाम पावे जन को इसलो बहु शास्त्र बहु सिमृति पेके सर्व टंडोल ओ जस नाही हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खट शास्त्र सिमृत उख्यान योग अभ्यास क्रम क्रम क्रिया सगल त्याग नमदे क्रिया अनेक प्रकार के बो जतना पुन दान हमें बहु रतना शरीर कटाए हो मैं कर राती वर्तने क्रह वो पाती नहीं तुल राम नाम विचार नान गुरमुख नाम जपे एक बार नाखुन पृथ्वी प्रति जीवे माँ दास तपिश्रती वे अग्न माहे होम प्राण कनक स्व है विरपोम दान न्योली क्रम क्रह वो आसन जैर मारक संजमत साधन नीमक निमक कर सही कटाए तो भी हो मैं मैल ना जाए हर के नाम संसर कुछ नाही नान गुरमुख नाम जपत पाई नानक गुरमुख नाम जपत गत पाई मन कामना तीर दे छुटे गुरु गुमान नाम ते उठे सोच करे दिनस अर रात मन के मैला तन ते जात इस दी कबो साधना करे मन ते कबो ना मिख्या टरे जल तो है बहु देह अनीत सुध कावी काची पीत मन हर के नाम की महिमा उच नानक नाम द्रे पतित बहमोच बहुत स्याण जमका पो व्याप अनेक जतन कर तृष्णा त्राप एक अनेक अग्नि बुझे कोट पौद्र गने सीजय चोट स्नाई को प्याल मो व्याप माया जाल आवर कर तो सगले जमडान गोविंद भजन बिनत नहीं मान हर का नाम जपत दुख जाए नानक बोले सहज सुभाए चार दाल जे को मांगे साजना की सेवा लागे जे को अपना दुख मिटावे हर नाम हृदय सदगावे जे को अपनी शोभा लोरे साथ संग यो हमें छोरे जे को जन्म मरण ते डरे साधना की सरनी परे जे जन को प्रभु दर्श प्यासा नानक ताके बल बल जासा सागल प्रख में प्रख प्रधान साथ संग प्रमटे मान आपस को जो जाने नीचा सो गुनी सब ते उचा जाका मन होए सगल की ना हर नाम तिन कट कट चीना मन अपने ते बुरा मिटाना पीख सागर शिष्ट साजना सोख दुख जन संदिष्टिता नान पाप नहीं लेपा निर्धन को धन तीरो नाओ निथाव को ना तीरा थाओ निमानी को प्रभ तीरो मान सगल कटा को दे हो दान करण प्रावन हार स्वामी सगल कटा के अंतर जामी अपनी गत निजान पिया अपने संगा परमराती तुमरी उस्त तुम त्यो ही नान करुणा जांस कोई सर्व धर्म श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल करम सागल क्रिया में उत्तम क्रिया सात संग दुर्मत मल हिरिया सागल उद्दम में उद्दम कला हर का नाम जपो जी सदा सागल बानी में मृत बानी हर को जसुन सुन खानी सागल खान त्यो उत्तम थान नानक देहे कट बस हर नाम श्लोक

गोती भगवंत भगतकार सगल त्याग दुष्का संग मन ते विनसे सगला परम कर पूजे सगल पार ब्रह्म साध संग पापा मल को वह तिस भगोती की मत उत्तम हो वह भगवंत की टायल कर नित नीत मंत्र अर्पय वचन प्रीत हर के चरण हृदय बसावै नानक साव भूति भगवंत को पावै सो पंडित जो मन पर बोधै राम नाम आत्म में सोधै राम नाम सार रस पीवै उस पंडित के अवधेश जग जीवै हर की कथा हृदय बसावै सो पंडित फिर जो ननावै वेद पुराण स्मृत पूजा मूल सुख में जान असूल सो वर्णा को दे उपदेश नानक पंडित को तदादेश वेद मंत्र सर्व को ज्ञान जो वर्णा में जप को नाम जो जो जपै जिसके गत होई साध संग पावै जन कोई कर कृपा अंतर उतार पशु प्रेत मुगत पात्र को उतार सर्व रोग का उखन नाम कल्याण रूप मंगल गुण काम काहू जुगत कितना पाइय त्रम नानक मिले जिस लिख्या दुर्क्रम जिसका मन पार्व का निवास जिसका नाम सत रामदास आत्म राम तृष्ण द्री आया दास दर्शन त्रपाई दिन पाया सदा निकट निकट हर जान सो दास तर के प्रवानु अपने दास को आप कृपा करे जिस दास को सब सो जी पर सगल संग आत्म उदास ऐसी जुगत नारक रामदास प्रभु की आज्ञा आत्म ही ताव है जीवन मुकत सो कहा वह तैसा हरक तैसा उस सोग सदानंद तय नहीं वियोग तैसा सोव्रत तैसे चमाटे तैसा अमृत तैसे भी खाटे तैसा अमृत तैसे भिख खाटे तैसा मान तैसा अभिमान तैसा रंक तैसा राजान जो व्रता ऐसा जुगत नारको पुरख किया जीवन मुकत पार ब्रह्म के सगले ठाओ जित जित कर राख तैसा तिन नाओ आपे करण करावन जोग प्रभु पावै सोई पुन हो पुत्रियो आप कोई अनंत तरंग लखे ना जाहे पार बिन के रंग जैसे मत ते तैसा प्रकाश पार बिन कृता बनास सदा सदा सदा दयाल सिमर।

कहीं कोट होय पुजारी, कहीं कोट आचार व्यवहारी, कहीं कोट वे तीर्थवासी, कहीं कोट मन पर मैं उदासी, कहीं कोट वेद के स्रोते, कहीं कोट दबिश्र होते, कहीं कोट आत्म ध्यानदार है, कहीं कोट कब का विचार है, कहीं कोट नौत नाप जाव है, नान करते का अंत ना पाव है, कहीं कोट भय अभिमानी, कहीं कोट अंध ज्ञानी, कहीं कोट कृपण कठोर, कहीं कोट अब आत्मनिकोर, कहीं कोट पद्र को ही रह, कहीं कोट पर दुख ना कर, कहीं कोट माया शर्माही, कहीं कोट परदेश ब्रह्माही, जित जित लावो तित तल ज्ञान करते की जा रहे करता रचना, कहीं कोट सिद्ध जति जोगी, कहीं कोट राजी रज भोगी, कहीं कोट पंखी सर्प उपाई, कहीं कोट पात्र वृक निबजाय, कहीं कोट पौन पाणी बैठंतर, कहीं कोट देश भूमंडल, कहीं कोट सचिया चूर नक्षत्र, कहीं कोट देवदान इंद्र चर चत्र, सगल सामग्री अपने सूत धार है, नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार है, कहीं कोट राजेश तामस सातक, कहीं कोट वेद पुराण स्मृत राष्ट्र, कहीं कोट किए रतन तुमंद, कहीं कोट नाना प्रकार जंतु, कहीं कोट किए चिरजीवे, कहीं कोट गिरिवेर सो भ्रंती वे, कहीं कोट दिखा किन्नर पिशाच, कहीं कोट भूत प्रेत सुकर मिलगाच, सबते नेरा सबूत है दूर, नानक आपलिप त्रिया भरपूर, कहीं कोट पाताल के निवासी, कहीं कोट नरक स्वर्ग निवासी, कहीं कोट जन्म जीव मरा, कहीं कोट बोझो नी पेरा, कहीं कोट बैठति ही खाई, कहीं कोट काल तक पाही, कहीं कोट किए धनवंत, कहीं कोट माया मैं चिंत, जे जी पाण चैते राखे रान सब किस प्रभ कह हाते, कहीं कोट बह बैरागी राम नाम संग तिन लिव लागी, कहीं कोट प्रभ को खोजंते आत्म में पार बमला हमते, कहीं कोट दर्शन प्रप्यास तिनको मिलियो प्रभ अवनाश, कहीं कोट मांगे सतसंग पार बम तिन लागा रंग, जिनको होए आप सो प्रसन्ना तेजन सरातन तान, कहीं कोट खानी अरखंड, कहीं कोट काच ब्रह्मंड, कहीं कोट हो अवतार, कहीं जुगत की नो विस्तार, कहीं बार पसरियोपाचार सदा सदा एक एक अंकार, कहीं कोट किने वो भात प्रभत हो प्रमाय समात, ताका अंतर जाने कोई आपे आप नानक प्रभ सोए, कहीं कोट पार के दास तीन हो वत्यात्म प्रगाट, कहीं कोट तद के बेते सदा निहार एको नित्रे, कहीं कोट नाम रत पीवा मरवे सब सदी जीव, कहीं कोट नाम गुण गावे आत्म रस सुख सहज समावे।

संत कै दुख निवार जा कटै संत कै दुख नियम ते नहीं छुटै संत कै दुखन सुख सब जाय संत कै दुखन नरक में पाय संत कै दुखन मत होए मलीन संत कै दुखन तो बात हीन संत के हते कोर कह ना कोई संत कै दुखन थान भर टोई संत कृपा कृपा जी करै नानक संत संगिंदक बीतरै संत के दुखन ते मुख पवै संतन कै दुखन काव जो लवै संतन कै दुखन तरप जुन पाए संत कै दुखन त्रिगत जोन किरमाय संतन कै दुखन त्रिकनाम जलै संत कै दुखन सब को छलै संत कै दुखन ते सब जाय संत कै दुखन नीच नीचाय संत दुखी का था को नाहे नानक संत पावे ता ओई बीगत पाहे संत का निंदक महत ताई संत का निंदक किन टिकन ना पाई संत का निंदक महाचियारा संत का निंदक परमेश्वर मारा संत का निंदक राजहीन संत का निंदक दुखिया अर्दीन संत के निंदक हो सर्व रोग संत के निंदक हो सदा विजो संत के निंदा दुख मैं दुख नान संत भावे तवटका भी होय मोक संत का दुखी सदा पिमित संत का दुखी किसी का नैमित संत के दुखी को डान लागे संत के दुखी को शक्ति आगे संत का दुखी महंकारी संत का दुखी जिन सदा बिकारी संत का दुखी जन मैं मरा संत के दुख ना छुपते तरह संत के दुखी को ना ही ठाओ नान संत भाविता नहीं मिलाई संत का दुखी अत बीते टूटे संत का दुखी किते गाज न पहुंचे संत के दुखी को ध्यान परमाई है संत का दुखी उजड़ पाई है संत का दुखी अंतरते थोता जो सास बिना मृत की लोथा संत के दुखी की जड़ कितना ही अपन बीजा पे ही खाहे संत के दुखी को अवन राखन हार नाम संत भावे ताले उबार संत का दुखी उबल लाए जो जल की हुन मछली तट बढ़ाए संत का दुखी भूखा नहीं राजे जो पावक निद्रा पै संत का दुखी चुटही खेला जो बुआर तिलकेत माई जुवेला संत का दुखी धर्म से रहत संत का दुखी सदमितिया कहत किरत निंदक का दुखी पिया नाम ज्योति भावे सोई थिया संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए संत के दुखी को दर्ग मिले सजाए संत का दुखी सदा चिकाई है संत का दुखी नाम रहन जीवाई है संत के दुखी की पूजे ना सा संत का दुखी उठ चले निराशा संत का दुख न चिटे कोई जैसा पावे जैसा कोई होई पया कृत ना मेटे कोई नानक जाने सच्चा सोई सब कर चिसके ओ करने हार सदा सदा तुझको नमस्कार प्रभु के उचित क्रोध इंद्रात जिसे दिया सात ग्रास सब कच वर्त चिसका किया जैसा करे तैसा को किया अपना खेल आप करने हार दूसर कौन कहे विचार जिसनों कृपा करे तिथि अपने नाम दे बड़ भागी नानक जन से चलो तजो सियानक सुरजनो सिमरो हर हर राए एक आस हर मन रखो नानक दुख ब्रह्मो जाय अजपदी मानक कीट एक प्रति जब जान देवन को एक है भगवान जिसका दिय रह गाय बोर न तुष्णा लागे आय मारे राख एक बाप मानुक कह किच नाई हाथ जिसका हुकम बूझ सुख होई जिसका नाम रख कंठ प्रोय सिमर सिमर सिमर प्रसोई नानक बिघन ना लागे कोई उस सत मन में कल निरंकार कर मन मेरे सत व्यवहार निर्मल रचना अमृत पियो सदा सुहेला कर ले जियो नैरो पेक ठाकुर का रंग साध संग सब संग चरण चलो मार गोविंद मिटे पाप जपे हर बिंदु कर हर करम सर्वन हर कथा हर दरगे नानक पूजन मथा बड़ भागी ते जिन जगवाहे सदा सदा हर के गुण गाहे राम नाम जो करे विचार से धनवंत गनी संसार मंतन मुख बोला हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी एको एक एक पहचान इत उत कियो सो जी जान नाम संग जिसका मनमानिया नानक ने निरंजन जानिया गुर प्रसाद या पनिया सुजे तिसकी जानो तृष्णा बूझे साध संग हर हर जस कह तु सारब रोग ते ओ हर जंद्रा तु अंधन कीर्तन केवल बखियार कृत मैं सोई निर्वाण एक ऊपर जिसम की आशा तिसकी कटिया जमकी पासा पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक से ना लागे दुख जिसको हर प्रभु मन चित आवे सो संत सुहेला नहीं जुलावे जिस प्रभु अपना कृपा करे सो सेवको किस से डराय जैसा ठाते साधिष्ठाया अपने कार्य में आप समाया सोदत सोदत सोदत सिजिया
ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਾਂ ਸਭ ਪੂਜਿਆ ਜਬ ਦੇਖੋ ਤਬ ਸਭ ਕਿਛ ਮੋਲ ਨਾਨਕ ਸੋਚ ਹੁਕਮ ਸੋਈਆ ਸੂਲ ਨਾ ਕਿ ਜਨਮਾ ਨਾ ਕਿ ਜਮਰਾ ਆਪਨ ਸ੍ਰੀ ਤਾਪੀ ਕਰੈ ਆਵਨ ਜਾਵਨ ਦ੍ਰਿਟ ਅੰਦ੍ਰਿਟ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਧਾਰੀ ਸਭ ਸਿਟ ਆਪੇ ਆਪ ਸਗਲ ਮੈਂ ਆਪ ਅਨੁਕ ਜੁਗਤ ਰਤਾਪ ਉਤਾਪ ਅਵਨਾਸੀ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਖੰਡ ਧਾਰਨ ਤਾਰ ਰਹੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਅਲਖ ਆਪੇ ਉਪਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆਪ ਜਪਾਤਾ ਨਾਨਕ ਜਾਪ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ ਸੋ ਸੋ ਭਾਵੰਤ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ਉਤਰੇ ਤਨਵੰਤ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਸਗਲ ਉਦਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਨ ਆਪੇ ਮੇਲ ਲੈ ਕਿਰਪਾਲ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਜਪੈ ਨਿਹਾਲ ਉਨਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋਈ ਲਾਗ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਬੜੋ ਭਾਗ ਨਾਮ ਜਪਤ ਪਾਵੇ ਵਿਸਰਾਮ ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਪੁਰਖ ਕੋ ਉੱਤਮ ਕਰਮਾਨ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੈ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਰੰਗ ਸਦਾ ਸਦਾ ਬਸੈ ਹਰ ਸੰਗ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਹੋਵੈ ਸੋ ਹੋਈ ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਪਛਾਣ ਸੋਏ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਕੀਆ ਜਨ ਮੀਠ ਲਗਾਨਾ ਜੈਸਾ ਸਾ ਤੈਸਾ ਦਿਸ਼ਟਾਨਾ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜੇ ਤਿਸਮਾਏ ਸੁਭਾਏ ਹੋਏ ਸੁਖਨੀ ਦਾਨ ਹੁਣ ਹੋ ਬਨਿਆਏ ਆਪ ਸੁਖੋ ਆਪ ਦੀਨੋ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਜਨ ਏਕੋ ਜਾਨ ਸਲੋਕ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਭ ਬਿਰਤਾ ਜਾਨਨ ਹਾਰ ਜਾਕਾ ਸਿਮਰਨ ਉਤਰਿਆ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਬਲਹਾਰ ਪਦੀ ਟੂਟੀ ਗਾਨਨ ਹਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਪੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਸਗਲ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਸ ਮਨ ਮਾਹੀ ਤਿਸਤੇ ਬਿਰਤਾ ਕੋਈ ਨਾਹ ਪ੍ਰੇਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਹਰ ਜਾਪ ਅਪਨਾ ਜੀ ਪ੍ਰਭਾਪ ਆਪ ਆਪਨ ਕੀਆ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਏ ਜੇ ਸੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਲੋਚੇ ਕੋਏ ਤਿਸ ਬਿਨ ਨਾਹੀ ਤੇਰੇ ਕਿਚ ਕਾਮ ਗਤ ਨਾਨਕ ਜਪੇ ਕਰ ਨਾਮ ਰੂਪ ਹੁਣ ਤੋਂ ਨਾਹੀ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਜੋਤ ਸਗਲ ਗਟ ਹੋਵੇ ਧਰਮੰਤਾ ਹੋਈ ਕਿਆ ਕੋ ਕਰਵੈ ਨਾ ਸਭ ਕੀ ਚਿਸਕਾ ਦੀ ਆਦਰ ਵੈ ਹੱਥ ਸੂਰਾ ਜੇ ਕੋ ਕਹਾਵੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਕਲਾ ਬਿਨਾ ਕਿਹੜਾ

त्रहुगुण ते प्रभु भिन्न तिसे बुझाई नानका जिस होगा सो प्रसन्न परी अपना से प्रमन में राख मानु की तू प्रीति आग जिससे प्रणाही किचकोए तरब निरंतर एक होए आपे बिना आपे रान गैर गंभीर गई सुजान पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निदान दयाल बख्शिंदु साध तेरे की चरणी पाओ नानक मन एव अंगराओ मनता पूर्ण सरना जोग जो कर पाया सोई होग हारन ब्रह्म जाका नेत्र कोर तिसका मंत्रण जा रहे हो आनंद रूप मंगल सद जाक सारव थोक सुनिए करता कर राज में राज जोग में जोगी तपना तपीसर की स्तना भोगी त्याई त्याय बुलते सुख पाया नान चे सुपुर्ग काख ने अंत न पाया जाकी लीला की मितराय सगल देव हारे अवगाए पिता का जन्म के जाने पूत सगल परोई अपने सूत सुमत ज्ञान ध्यान जिंदे यमदास नाम त्याम जय तय गुण में जाको परमाए जन्म मरै पर आवे जाए ऊंच नीच चित्ते अस्थान जैसा जनावे तैसा नाम जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना भेद।

सत सत प्रतनहार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत वेखनहार नाम सत सत्यावनहार आप सत सत सबदारी आपे गुण आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रभुता सुरत सत सत जसुता पूजन हार को सत सोई नान सत सत प्रभोई सत स्वरूप हृदय जनवानिया करण क्राम तिलमोन पछानिया जा कर दे विश्वास प्रभाया तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया पैती निर्भव हो बसाना जिस ते उपजा तिस माई समान बर्त माई ली बस गड़ाई ताको बिन्ना कहना जाई बुझे बुझन हार विवेक नारायण मिले नानक एक ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सदा पुजारी ठाकुर के सेवक का मन प्रतीत ठाकुर के सेवक के निर्मल रीत ठाकुर को सेवक

भगवत सुधार है, प्रभु अपने का हुक्म पहचान है। जिसके महिमा कौन बखानू, जिसका गुण का एक न जानू, आठ पैर प्रभु से हजूरे, को नान से ही जन पूरे, मन मेरे तिन की ओट लहे, मन तनी अपना तिन जन दे, जे नि जन अपना प्रभु पछाता, सो जन सर्व थोक का दाता, तिसकी शरण सर्व सुख पावे, तिसका दर्श सब पाप मिटावे, और शान सगली साड़, तिस जन की तू सेवा।

नानक बहुर न आवे जाए, तुस्ते दूर कहाँ हो जाए। उबरे राखन हार दिहाय, निर्भो जपै सगल भो मिटै, प्रभु कृपाते प्राणी छुटै। जिस प्रवाके दिस नाई दुख नाम, जपत मन हो सु चिंता जाय मिटै अहंकार। तेजन को कोई न पहुँच रहा, सिर ऊपर ठांडा गुरसूरा। नानता के कार्य पूरा, मात पूरी उम्र जा की दृष्ट। दर्शन पेकर उदर श्रेष्ठ, चरण कमल जा के अनु सफल दर्शन सुंदर रूप। तन सेवा सेवक परवान, अंतर जामी पुरख प्रधान। जिस मन बसै सोहोत निहाल, ताके निकट नावत काल। अमर पे अमरा पद पाया, सास नानक हर त्याय श्लोक। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। अश्वदी संत संग अंतर प्रभु डीठा, नाम प्रभु का लागा मिठा। सगल समग्री एक घटमाए, अनेक रंगना नादिष्टाए। नौरिद अमृत प्रभु का नाम, देह में इसका विश्राम। सुन समाध न तैनात, कहन न जय अचरज विस्माद। तिन देखा जी साफ दिखाए, नान ती जना बुझाए। सर्व भूत आप और तारा, सर्व नैना पे कन्हारा। सगल समग्री जा का तना, आपन जस आप ही सुना। आवन जाने खीर बनाया, गया कारी कीनी माया। सब कह मध्य लिप्त हो रहे, योगी कहना सो आप ही कह। जो किच कहना सो आपे कह। बंतन पर्वत है पार ब्रह्म, जैसी आज्ञा तैसा करम। पौन पानी वै संतर माए, चार कुंड दे दिसे समाए। तिस्ते बिना ही कोठाओ, गुरु प्रसाद नानक सो पाओ। वेद पुराण सिमरत मैं देव, सत्सर सूर नक्षत्र मेघ। बाणी प्रभु की सबको बोले, आप अडोल न कबू डोले। सर्व कला कर खेले खेल, मोल न पाइय गुणे मोह। सर्व ज्योत में जाके ज्योत, हर स्वामी हो थोत। गुरु प्रसाद ब्रह्म का नाश, नानक तिनमय विश्वास। संत जनाका पेकन सब परम, संत जनाका हृदय सब तरम। संत जना सुन सुबचन, सर्व व्यापी राम सुरचन। जिन जाता तिसे रहत, सत वचन साधु सब कहत। जो जो होए सोए सुख मान, करण करावन हार प्रभु जान। अंतर बसे बार भी हुई, नानक दर्शन देख समूई। आप सत क्या सब सत, तिस व्रते सगल युत्पत। तिस भावत करे विस्तार, तिस भावत अहंकार। अनेक कला रखी न जाए, जिस भावत तिस लय मिलाए। कहो निकट कौन कही है दूर, आपे आप भरपूर। अंतर गज साहब जनाए, नानक तीजन आप बुझाए। सर्व भूत आप और तारा, सर्व नैन आपे खनारा। सगल समग्री जा का तना, आपन जस आप ही सुना। आवन जान खेल बनाया, आज्ञाकारी की निमाया। सब कहना तृप्त हो रहे, जो कुछ कहना सुबह पे कह। आज्ञा आवे आज्ञा जाए, नान जा पावे चले समाए। इस्ते हुए सो नाई बुरा, बुरा कहो कि न कच करा। आप भला कर तो नहीं की, आपे जाने अपने जी की। आप साथ तारी सब साथ, ओत ओत आप बन सम्राट। ताकि गदमित कहीं न जाए, दूसरा होता सो जी पाए। तिसका किया सब परवान, गुर प्रसाद नानक जान। जो जाने तिसरा सुखो, या मिलाए ले पर सोए। ओ धनवंत कुरवंत पतवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत। तन तन तन जन आया, तिस प्रसाद सब जगत तराया। जन आवन काहे स्वाव, जन कह समचित आवै नाव। आप मुकत मुकत करे संसार, नानक तिस जन को।

अश्वदी पूरे गुर का सुनोपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख साथ साथ सिमरो गोविंद मनंतर की उतरे जिंद आस नित्यागो तरंग संजना की तुर हनुमंग आप छोड़ बेनती करो साध संग गगन सागर तरो हर तन के भरले भंडार नानक गुरु पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संपज ब्रह्मानंद नरक निवार उदारो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो चित चित्वो नारायण एक रूप जा कह रंगने गोपाल दमोदर दीन दयाल दुखभंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का ये आधार उत्तम सरोग साध के वचन अमली कलाल हे रतन सुनत कमात हो सुधार आप तो रह लो कहनिस्तार सफल जीवन सफलता का समझा कह मल्लाकार रंग जय जय शब्द नाहत वाजय संत नंद करे प्रगा जय प्रगटे गोपाल मात कह माथे नानक उतरे तिनके साथे शरण जो सुन सर नहीं आए कर कृपा प्रभाव मिलाए मिट गए बैर भये सब रेन अमृत नाम साध संगलैन सौ प्रसन्न भये गुरुदेव पूर्णो सेव की सेव आल जंजाल विकार ते रहते राम नाम सुन रचना कहते कर प्रसाद दया प्रतारी नानक ने विखे कुमारी प्रभु की स्तुत करो संत मीत सावधान का गचीत सुकमनि सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसै सो होत निदान सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब होए सब ते ऊंच पाए स्थान बोर न होवे आवन जान हर धन खाट चले जन सोए नानक जिसह परापत होए खेम साथ विदनों ने बुद्ध ज्ञान सब ते सिद्ध विद्या तप जोग प्रभु ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रकाश सब कैमर सकल थे उदास सुंदर चतुर तत्व काव्यता समदर्शी एक दृष्टिता ए फल तिस जन कै मुख बने गुरु नानक नाम वचन मन सुने।

पाते जमते छुटे जा कै मस्तक करम प्रभु पाए साध शरण नानक थे आए जिस मन बसै सुने लाए प्रीत तिस जन आवै हर प्रभु चीत जन्म मरण ताका दुख निवारे दुर्लभ दे तत्काल उदारे।

सुखमनि सुख अमृत प्रभु नाम भगत जना के मन विसराम। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की।

प्रोगंती और सोगंती जल जोगंती बहुपात पचा सत्वर मेरा सदा दयाला मोहे दिन को राख लिया काटिया रोग महा सुपाया हर अमृत मुख नाम दिया मन मेरी गोहो हर नाम का ओला तुझे न लागे ताता चला ऐसा जिन्हें शरण के तिहन जिन्हा दी विचार दर्शारण के पाई उस मानप्रोह दे नाल जुड़िया रहे जिस मानप्रोह दी कृपा सदका सदा रहे निर्मल सी काया काल ना कवहूं व्याप है उस मानप्रोह दे चन्ना नाल जुड़े रहिए ताकि साडा जीवन सुख दे नाल वर्तित होए सो इनिक सेवा प्रवान करनी हुई अपना चुका दिखी मैं आओ अगले प्रोग्राम सरुण करिए सत्कारियो ज्ञानी वरिंद्र पाल सिंह जी उन्हों पासो अज दे जिहड़े हम चल रही गुरबाणी दी विचार ओ सरुण करिए गुरु इतिहासिक इतिहास सरुण करिए दसलो फतेह प्रवान करो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।